0: दिया था हाथ मिलोगे समझे
1: अज समझे।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे सुबह के 6 बजे के समाचारों के साथ।
2: नमस्कार। आदाब एलुजीतो। मां की सर्जरी के वक्त देश के अलग अलग इलाकों में कल दंगा फसाद शुरू होने लगा। ये हरकतें देर रात तक जाती रहीं। सैयद ख्वामी स्थिति बेकाबू थी। अबेकोंबी में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। रात भर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती रही। बकली सैयद ख्वा अबेकोंबी रेजिडेंस मोगालकों पिछित रिवियर बॉम्बू ग्रोंगोब रिशल्यू वगैरह में प्रदर्शन किए जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी में आग भी लगाई गई। कुछ समय बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजवाली ने बताया कि इन हरकतों के चलते गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। देश में फसादों की वजह से आज सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने रात के दौरान ही ये फैसला लिया। यहां तक कि बच्चों और छात्रों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन रखने के लिए ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NCE के इम्तिहानों के अलावा SC और HSC के पर्चों को भी टाल दिया गया है। प्रदर्शनों की वजह से जेंडर इक्वालिटी और बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचित किया कि आज सभी नर्सरीज और डे केयर सेंटर बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं भी रुकी हुई हैं। फसादों से मेट्रो एक्सप्रेस के नेटवर्क को पहुंचाए गए नुकसानों के चलते आज सुबह 6 बजे मेट्रो सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी। देश में उत्पन्न हालत की वजह से फिलहाल तकनीकी टीमें भी स्थल पर नहीं जा पा रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड सभी असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और जल्द से जल्द सेवाएँ सुचारू रूप से चालू करने की उम्मीद रखती हैं। कई घंटों की सर्जरी के बाद जख्मी एलुजीतो मां के शरीर से गोली निकाली जा सकी। ये ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ। उनके नफ्स को नुकसान पहुंचाए बगैर ये हस्तक्षेप किया जा सका। करा स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय और मोशन डॉक्टरों को शाबाशी दी। एलुजीतो मां की हालत को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मंत्री अनिल बिच्चू ने जनता से इन झूठी बातों पर यकीन न करने की मांग की है। और रात के दौरान कई सांसद तथा राजनीतिज्ञ प्रदर्शन वाले स्थलों पर गए थे। उन्होंने देश में शांति बनाए रखने की मांग की और किसी की बातों में आकर देश के अमन को खतरे में ना डालने की अपील की है। विदेश में नेपाल में सैलाब की आफत आई है। कम से कम 15 लोग लापता है और उत्तर केंद्र में 200 से ज़्यादा घर तबाहकुन है। करीब 2 लाख लोगों को विस्थापन की चेतावनी दी गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ

0: बादल रह रहकर स्थानीय मौसम पर असर करेंगे और मस्करिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटो में, दोपहर बाद बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, बाद में मौसम सुहाना होगा। आज रात के दौरान घने बादल होंगे, ऊंचे इलाकों में कुछ चींटें पड़ेंगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 6:11 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: काल रात्रि है, कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।

0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। 13 तारीख अक्टूबर का महीना, मंगलवार का दिन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 और 20 सेकेंड्स। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, हमारा सुप्रीम नमन स्वीकार करें। नवरात्र के इस पावन पर्व में आज है तृतीया रात्रि, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस दिन की शुरुआत हम करेंगे संतवाणी कार्यक्रम के साथ। और ये कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य श्यामदास जी महाराज, और ठीक 6:20 पर हम जुड़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम के साथ नवरात्रि के संदर्भ में। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सकलानी जी। 6:30 पुनः हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए, देवी माँ की कृपा से आज के इस दिन की शुरुआत हम करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ। कहते हैं, अच्छे लोगों में एक खास विशेषता होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी आ जाए, अपने भीतर की अच्छाइयों को ना मरने दें। आज के इस कार्यक्रम के साथ आइए, स्वागत करते हैं आचार्य श्यामदास जी महाराज का संतवाणी कार्यक्रम में।
1: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

कृपा। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोनतेर बाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम पिछले ही वक्तव्य को आगे बढ़ाएंगे। विषय है सद्गुरु के समान कोई नहीं।

मथुरा में सद्गुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को मिले और धनी धर्मदास साहब ने सद्गुरु कबीर साहब को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव और परिवर्तन आया। धनी धर्मदास साहब कहते हैं, पाछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे से सद्गुरु मिले दीपक दिन्हा हाथ। धनी धर्मदास साहब कहते हैं, मैं तो लोक तथा वेद आदि धर्म शास्त्रों में जो क्रिया कर्म नियोजित है, मैं तो उनके पीछे लगन लगाए अंधे की भांति तेजी से चला जा रहा था। सौभाग्य से रास्ते में सद्गुरु मिल गए और उन्होंने ज्ञान दीपक हाथ में थमा दिया। बस उसी से मुझे मेरे घर अर्थात निज आत्म स्वरूप की राह मिल गई। स्पष्ट आशय यह है कि सद्गुरु के दिव्य ज्ञान प्रकाश को पाकर शिष्य के जीवन का सब भ्रम तिमिर जंजाल नष्ट हो जाता है। फिर वह मोह माया काल कल्पनाओं एवं मिथ्या मान्यताओं में नहीं फंसता। उसी सांसारिक कर्मों तथा प्राणी पदार्थों में आसक्ति नहीं रहती। सद्गुरु के ज्ञान प्रताप से वह तन मन इंद्रियों पर संयम पा लेता है। आशा तृष्णा मद मत्सर तथा राग द्वेष आदि द्वंद्वों से छूट जाता है। उसे किसी सुख दुख के प्रति स्प्रेह निस्प्रेह नहीं रहती। वह समदृष्टि एवं समत्व बुद्धि के अनुसार बरतता है। उसे सब में अपने आप सा स्वरूप भासने लगता है और वह सबसे समान प्रेम व्यवहार करता है। फिर तो वह अहंता ममता वासना से रहित हुआ निष्काम भाव से करने योग्य कर्तव्य कर्म का पालन करता है। सद्गुरु के उपदेश अनुसार वह स्वयं संयम सदाचार में रहता हुआ अपने पवित्र अंतर्मन में सत्य दया क्षमा शील धैर्य तथा विचार आदि सद्गुणों को धारण कर सहज सेवा भक्ति साधना में लगा रहता है। सद्गुरु के ऐसे सुयोग्य शिष्य के लिए परम सुख शांति एवं कल्याण मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और वह अंत में सदा सर्वदा के लिए आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जिस परम कृपालु समर्थ सद्गुरु की दया एवं दिव्य सत्य ज्ञान युक्ति से जीवन सुसंपन्न सुविकसित समुन्नत एवं सार्थक बने और अंत में साधक शिष्य भव बंधनों से छूटकर कल्याण को प्राप्त होता हो, भला उससे अधिक महनीय महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान क्या कुछ और हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। सद्गुरु ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वोपरि और उनका सत्य ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट अद्वितीय अनमोल वस्तु है। ध्यान दें कि जीवन में जो रहस्यमय सत्य एवं सार तत्व है, वह है अविनाशी चेतन आत्मा। घट घट में रमने वाला यह आत्मा ही परम सत्य या परम तत्व परमात्मा है, परंतु भूले हुए लोग इसे न जानकर कहाँ कहाँ खोजते फिरते हैं। इसी से सब दुख व्याप्त होते हैं, परस्पर राग द्वेष करते हैं और नाना प्रपंच पाखंडों में पड़ते हैं। अपने इस नित्य शुद्ध स्वरूप आत्मा को जानने तथा लखाने परख खाने वाले सद्गुरु ही तो हैं। सद्गुरु की महिमा असीम अपार है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में गुरु की वंदना एवं गुरु महिमा के बारे में लिखते हैं, बंदों गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु।

0: वचन रवि कर निकर बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी मह चूरन चारु श्रमन शकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और प्रत्यक्ष नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों को नाश करने वाला है। संत गुरु पीरों में परम संत स्वरूप कबीर साहब इस लोक में पूर्ण समर्थ सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर आए और उन्होंने दया भाव से अपनी अमृत वाणी द्वारा जीव कल्याण का सत्य ज्ञान उपदेश दिया जिससे कि वह भवसागर से पार हो सके। भव बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ सद्गुरु कहलाए। वे स्वतः आत्मानुभवी तथा देहाभिमान से मुक्त आत्मस्वरूपस्थ थे, अतः उन्होंने सत्य आत्मा का वर्णन किया और इसकी चर्चा करने एवं इसे लखाने पर खाने वाले साधु गुरु गुण लक्षणों को दर्शाते हुए उनके जीवन महात्म्य पर भरपूर प्रकाश डाला। उन्होंने संत गुरु की सेवा तथा इनके सत्य ज्ञान से ही मानव जीवन की सार्थकता एवं उसका कल्याण बताया है। उन्होंने सचेत करते हुए समझाया है कि भेषधारियों के चक्कर में ना पड़कर विवेक वैराग्यवान संत गुरु की बंदगी करो और उनसे अपने उत्थान उद्धार की आत्मज्ञान दीक्षा पाओ। सच्चे सद्गुरु अपने शिष्य भक्तों के उद्धार कल्याण के लिए उन्हें व्यवहार परमार्थ के सुधार और भक्ति साधना की गहन गंभीर सार युक्त बातें समझाते हैं, उनका शंका समाधान करते हैं। पूर्ण सद्गुरु कभी अपने शिष्य से और अधिकारी सुपात्र शिष्य अपने सद्गुरु से कभी अलग नहीं होते। सद्गुरु प्रकट रूप में सदा शिष्य के साथ नहीं रहते परंतु ज्ञान रूप में सदा साथ रहते हैं। सिद्ध साधक शिष्य है। इस प्रकार सद्गुरु और शिष्य का संबंध अटूट होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, लक्ष्य कोष में गुरु बसे सुरति दियो पठाए शब्द तुही असवार हैं छिन आवे पल जाए। प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य मूल रूप से अपने जीवन का कल्याण करना है। इसके लिए हर किसी को अपने जीवन में सद्गुरु तथा सद्गुरु के सत्य ज्ञान का महत्व समझते हुए उनकी शरण में जाकर स्वयं को कृतार्थ करनी चाहिए। बंदगी साहेब, आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। सतनाम साहेब बंदगी।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

0: तो श्रोताओं, इस गुजराती भजन के बाद आइए जुड़ते हैं इस विशेष कार्यक्रम के साथ जो श्री सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे आचार्य सकलानी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा की वंदना करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे देवी, मेधावसी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, दुर्गा सी दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री ही कैट भारी हृदय ककृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी ही तो वंदना की जाती है, क्योंकि आप ही मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान नारायण के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। ईसत सहा सममलम परिपूर्ण चंद्रम बिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतम प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषा सुरेण। हे माँ, आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देख करके महिषासुर ने और कुपित होकर आप पर

आघात कर दिया। हे मां, बहुत आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटी करालं उद्यच्छ सांक सदृश छवियन्न सद्यः प्राणान मुमोच महिषस्ततदीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितांतकदर्शनेन। हे देवी, अरे वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्त्रभौं के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देख करके महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। ये तो और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने के और सामर्थ्य कर सकता है। हे जगदम्बा, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानी विज्ञातमेतधुनैव यदास्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। हे परमात्म स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो, आपके प्रसन्न होने पर ही तो विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। ये बात अनुभव के द्वारा और प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है कि आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना भी क्षण मात्र में और भस्म हो उठी। हे मां, ते सम्मता जनपदे शुधने धनानि तेषां तेषां यसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। हे मां, अरे आप तो हमेशा अभ्युदय कर्त्री हैं, जिन लोगों पर और आप कृपा दृष्टि रखती हैं वे ही लोग जो हैं श्रोताओं देश में सर्वत्र और सम्मान की प्राप्ति करते हैं। उन्हीं को सम्मान मिलता है, धन मिलता है और उन्हीं की ख्याति दुनिया भर में फैलती रहती है। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल होता ही नहीं है। अरे वे ही अपने स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ, नौकरों के साथ रह करके धन्य होते रहते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्याद्रितः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन। हे देवी, आपकी ही और कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक हमेशा धर्माचरण में लगे रहते हैं और उसके प्रभाव से वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप निश्चय ही त्रैलोक्य को वांछित फल प्रदान करती हो। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। हे मां, हे दुर्गा मां, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण करती हो। आप स्वस्थ मनुष्यों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और परम कल्याणकारी बुद्धि देती हो। दुख दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव और द्रवित रहता है।

ऐसा दूसरा कौन है जिसका मन इतना कोमल है, जिसके मन में और इतनी करुणा है। हे देवी, ए भिर हतेर जगदुपई ते सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एलोजी टुमा का ऑपरेशन कामयाबी से किया गया। कई घंटों के बाद डॉक्टरों ने उनके शरीर से गोली निकाली, वो भी बगैर उनके नब्ज को नुकसान पहुंचाते हुए। रात के दौरान देश में अलग नज़ारे। देश के कई इलाकों में फसाद। पुलिस स्टेशनों में आग लगाई गई। पुलिस की भारी तैनाती की गई। एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। फसाद की वजह से आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद। इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी बाधित हैं और रूरल ट्रांसपोर्ट भी में भी रुकावटी। पुलिस कमिश्नर ने सबसे शांत रहने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। और विदेश में नेपाल में सैलाब, 5 लोग लापता, 2,00,000 से ज्यादा लोगों को खतरा। नमस्कार और आदाब। कई घंटों की सर्जरी के बाद जख्मी एलोजी टुमा के शरीर से गोली निकाली जा सकी। ये ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ। उनके नफ्स को नुकसान पहुंचाए बगैर ये हस्तक्षेप किया जा सका। कल रात स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय और मुस्लिम डॉक्टरों को शाबाशी दी। एलोजी टुमा की हालत को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मंत्री अनिल बिच्चू ने जनता से इन झूठी बातों पर यकीन न करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री को सुनते हैं।
2: Après plusieurs liens d'intervention, l'équipe mauricien et banéasien fait une réussite chez Abal depuis le coup sur madame là, sans blesse banéa. C'est un grand succès, c'est une grande victoire. Et je tenais à remercier le médecin mauricien et le médecin indien pour le travail formidable que je viens de faire. Je viens aussi remarquer depuis quelques jours une bonne fausseté qui peut circuler la santé madame là. À ces bonnes faussetés, bonnes mensonges, je fais l'appel au public par rendre dans ce Venezuela.
1: उनके पति जोनाथन टुमा ने अपनी पत्नी की सलामती की दुआएं मांगने की अपील की और जनता से अनुचित हरकत ना करने की मांग की। उन्होंने ऐसे वक्त पर शांति बनाए रखने और सब्र से काम लेने की मांग की है। जोनाथन टुमा को सुनते हैं।
3: Plusieurs endroits, Banapé, Manifestat, qui des choses préfèrent.

0: passe un appel à tous avant du monde, s'il vous plaît, de tout cœur, s'il vous plaît. C'est pas ça qui fait bizarre. Ce qui fait bizarre là, vraiment, c'est prier.
1: एलोजी टोमा की सर्जरी के वक्त देश के अलग अलग इलाकों में दंगा फसाद शुरू होने लगा। ये हरकतें देर रात तक जाती रहीं। सैन क्वामी स्थिति बेकाबू होने लगी थी। अबयाकोंबी में पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई। रात भर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती रही। बौकली सैन क्वा अबयाकोंबी रेजिडेंस मोगालकों रेजिडेंस आतली पेचित रिविया बॉम्बू ग्रांगोब वगैरह में प्रदर्शन किए जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। कुछ समय बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली ने बताया कि इन हरकतों के चलते कुछ गिरफ्तारियां भी की जाएंगी।
2: La police est tout sous contrôle et nous pouvons rassurer la communauté ici qui plus affaires déroulent dans l'eau. Mais seulement, mon plaisir, c'est qui vous fait une affaire extravagante, vous subirez les conséquences. Nous n'avons pas à tolérer une affaire qu'ils veulent faire. Nous pouvons agir en fonction de ce qu'ils veulent faire. Non, il y a un policier qui maintenant prend une autorité choisie. Donc, des mois après, ils ont arrêté. Moi, le policier vient nous demander. Il y a un petit souci de s'occuper. Il peut faire traitement à l'hôpital. Pas grave, c'est bon. Mais néanmoins, une autorité qui prend un numéro, puis un plaque, non, il s'agit d'un noir, n'est qu'il ne démarre.
3: Arrestation.
2: Non, là, pas encore, là. Il faut dire en temps et lieu. Il faut dire dans le CNDJ, il faut dire en temps et lieu.
1: देश में फसादों की वजह से आज सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने रात के दौरान ही ये फैसला लिया। यहां तक कि बच्चों और छात्रों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन रखने के लिए ग्रेड 4, ग्रेड 5 और एनसीई के इम्तिहानों के अलावा एससी और एचएससी के पर्चों को भी टाल दिया गया है। प्रणव व्यारी ने मंत्री महन गंगा प्रसाद से बात की।
4: Sécurité de tout un chacun. Surtout sécurité nous bat nos enfants, sécurité nous bat nos staffs, sécurité bat nos parents. Parce qu'il nous parle de nos enfants sautent la case, allent vers l'école, nous on vise à la maison, et nous pas envie de nos staffs teaching et non-teaching, nous pas envie de nos parents visant et dans souci qui arrive aux autres enfants dans l'école. Pour raison de sécurité, nous prenons décision. On ferme toutes les écoles pré-primaires, primaires, secondaires, primary school et nos centres de formation, MIT et ITET. Ça, décision-là qu'on prend pour qui nous avons enfants sur sécurité capable de garantir. Ensuite, tout va l'examen qu'on prévoit pour qui s'idule pour demain, l'examen dans l'école primaire, l'examen dans l'école secondaire, l'examen Cambridge SCHSE, tout ça va de l'examen là, nous est postponé pour une date ultérieure qui peut être communiquée par les autorités dans les jours à venir.
1: जी हाँ, हम स्पष्ट करते हैं कि आज के लिए जितने भी सारे इम्तिहान निर्धारित थे सभी इम्तिहानों को बाद के लिए टाल दिया गया है। कल रात मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने हमारे सहयोगी पत्रकार प्रणव बिहारी को ये जानकारियां दी। प्रदर्शनों की वजह से जेंडर इक्वालिटी और बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचित किया कि आज सभी नर्सरीज और डे केयर सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी रुकी हुई हैं। फसादों से मेट्रो एक्सप्रेस के नेटवर्क को पहुंचाए गए नुकसानों के चलते आज सुबह 6 बजे मेट्रो सेवाएं नहीं दी जा सकी। देश में उत्पन्न हालत की वजह से फिलहाल तकनीकी टीमें भी स्थल पर नहीं जा पा रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड सभी असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और जल्द से जल्द सेवाएँ सुचारू रूप से चालू करने की उम्मीद रखती हैं। इसके अलावा बस सेवा भी ठप है। रोजिल बसर सर्विसेज लिमिटेड ने आम जनता को सूचित किया कि देश में चल रहे माहौल की वजह से बस सेवा भी ठप है और वो तब तक सेवाएं प्रदान नहीं करेगी जब तक कि स्थिति सुचारू रूप से नहीं लौट जाती। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस अफसर पर गाड़ी चलाई है। पुलिस कांस्टेबल शेख अशफाक मंगोहाली पर एक परवार किया गया जब वो कल रात ड्यूटी पर थे। वो घायल हुए हैं। अशिता रघु ने उनसे बात की। स्थल पर इलाके के सांसद ईशान जुमन भी गए थे। उन्होंने

0: उन्हें सबसे शांत रहने की अपील की क्योंकि ये देश सबका है और तोड़ फोड़ करने से नुकसान सबका होगा, उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें सुनते हैं।
1: C'est pas quand nous pour la guerre, quand nous pour casse pour tout, demain quand nous pour rentrer la case, c'est nous-mêmes nous pour perdre. Donc, pour réduire, pas rendre, pas compliquer la vie des autres du monde. Aujourd'hui, nous pouvons faire des autres, nous pouvons faire des autres contre nous. Nous pouvons faire des autres dans nous la case, nous dans nous l'endroit, nous pouvons rendre nous-mêmes pour voisins du tout. Dans la langue de ce qui peut passer, je ne prends un cocktail monotone, je n'en veux pas. Ils sont capables, innocents. Ils sont capables, nos voisins, ils sont capables, nos frères, ils sont capables, nos familles. Mais qui fait, nous pouvons faire ça. Donc, pour réduire,
0: और रात के दौरान ब्रूनो लोरेट भी सेंट क्वा में नजर आए। उन्होंने लोगों से शांत रहने की मांग की और किसी की बातों में आकर देश के अमन को खतरे में ना डालने की अपील की है। ब्रूनो लोरेट ने अशिता रघु से बात की।
2: Oui, nos droits n'étaient pas d'accord. Oui, nous tous sommes blessés pour ce qui est arrivé. Oui, nous tous pas contents qu'il est arrivé. Mais ça, ce n'est pas la solution. Mais du fait, le prétexte est servi maladie ou blessure à une personne qui peut lutter entre la vie et la mort pour se survivre, pour qu'il nous fasse des autres. Et ça, ce n'est pas bon. Et dans les autres moyens, quand une fois, priorité aujourd'hui, c'est la santé et la guérison d'Elodie. Après, nous avons la police concernée. Ça, la justice pour faire. Mais nous pouvons assurer qu'ils ont fait la faire. Mais le plus important, Maurice, pas capable de vivre un épisode comme en 99 encore.
0: Aur aapko ye bhi khabar dein, parivahan ke kshetra mein UBS ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है और ये कहा गया है कि आज सुबह सभी लाइनों पर बदकिस्मती से बस सेवा प्रदान नहीं की जा सकेगी। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा के नौ रूपों पे तीसरा स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति, वीरता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को हिम्मत मिलती है और वे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने असुरों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक रूप धारण किए। माँ चंद्र घंटा उन्हीं दिव्य रूपों में से एक हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिसके कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद माँ पार्वती ने चंद्र घंटा का दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप धारण किया। इस स्वरूप में माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और बुराई के विरुद्ध खड़ी होती हैं। उनका घंटा बुरी शक्तियों को दूर करने और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग अस्त्र शस्त्र और पवित्र वस्तुओं को धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, वीरता और निडरता का प्रतीक है। माँ के मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र उनकी दिव्यता और शांति को दर्शाता है, जबकि घंटे का प्रतीक बुरी शक्तियों के नाश और सकारात्मक ऊर्जा के संचार से जुड़ा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विशेष महत्व है। भक्त उनकी पूजा करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की कृपा से नकारात्मकता और मन की अशांति दूर होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा में लाल और केसरिया जैसे रंगों का प्रयोग कई परंपराओं में किया जाता है। इन रंगों को शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। भक्त माँ को दूध, दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग अर्पित करते हैं। पूजा के समय मंत्र जाप और दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है।

विदेश में नेपाल में सैलाब की आफत आई है, कम से कम 15 लोग लापता हैं और उत्तर केंद्र में 200 से ज्यादा घर तबाहकुन हैं। करीब 2,00,000 लोगों को विस्थापन की चेतावनी दी गई। बाढ़ से कई मूल ढांचे नष्ट हो गए हैं। टीमें बंद सड़कों को साफ करने में लगी हैं। अमेरिका के एक मनोरंजन पार्क में एक रोलर कोस्टर में

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल रहकर स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्कारेंस के दक्षिण में जोरदार आंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिराएंगे, दोपहर बाद को भी दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में घने बादल होंगे और कुछ चींटे पड़ेंगी। बाद में मौसम सुहाना रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, ऊंचे इलाकों में रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 6:11 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की सुर्खियां एक बार फिर से पेश हैं। लुजीटोमा का ऑपरेशन कामयाबी के साथ किया गया। कई घंटों के बाद डॉक्टरों ने उनके शरीर से गोली निकाली, वो भी बगैर उनके नफ्स को नुकसान पहुंचाए हुए। रात के दौरान देश में अलग नज़ारे। देश के कई इलाकों में फसाद। पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी गई। पुलिस की भारी तैनाती रही। एक पुलिस कांस्टेबल को जख्मी। फसादों की वजह से आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद। यहां तक कि पॉलिटेक्निक्स और MITD के केंद्र भी बंद रहेंगे। मेट्रो एक्सप्रेस की सेवाएं और बस सेवाएं ठप। UBS और रेल ट्रांसपोर्ट ने विज्ञप्ति जारी की है। पुलिस कमिश्नर ने सबसे शांत रहने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। और विदेश में नेपाल में सैलाब, 15 लोग लापता, 2 लाख से ज्यादा लोगों को खतरा। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दिन आप सभी को। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

शोक समाचार सुनिए। सुबललीन पायुद वाकवामी 46 साल के 46 years old, श्री उमेश सुबल जो रोशन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 12 बजे इनके पिता प्रीतमलाल सुबल के घर सुबललीन पायुद वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। क्लोजेल नंबर 1 फिनिक्स में 71 साल के 71 years old, जनाब कसामबाई मीर हुसैन, जनाब कसामबाई मीर हुसैन इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 11 बजे के बेटे मोहम्मद मिदीन मीर हुसैन के घर क्लोजेल नंबर 1 फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंटिलास्को का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कांतनानी पोम्पलमूस में 70 साल की 70 years old, श्रीमती जसवंती गोपाल दोस, श्रीमती जसवंती गोपाल दोस

परशुराम भैरव जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दो बजे इनके पति संजय गोपलडोस के घर पोम्पलमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अविन तिलफिया कैथर बोन में 85 साल की 85 years old, मोहतरमा बीबी आयसा ओगबोगली, मोहतरमा बीबी आयसा ओगबोगली पैदायशी नाम उमर इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 10 बजे इनके बेटे रेजा ओगबोगली के घर एवेन्यू तेलफेया कैथरबोन से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 10 AM। सिनेक रोड प्लेन दे रोश में 55 साल की 55 years old श्रीमती कविता हरपाल, श्रीमती कविता हरपाल पैदायशी नाम दुबोगी जो करुणा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 12 बजे इनकी बेटी अदिति हरपाल के घर सिनेक रोड प्लेन दे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावाउचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। नंबर 1 20 डॉक्टर मोम्पले रोड बुबासे में 63 साल की 63 years old श्रीमती बसंती चोकरा नारायणन, श्रीमती बसंती चोकरा नारायणन पैदायशी नाम उकाल जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर नंबर 1 20 डॉक्टर मोम्पले रोड बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 22 मोसेलमा सिकमो गुमे 61 साल के 61 years old श्री अनिल रीगा जो पेट्रोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रीगा के घर मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। गांधी रोड लालमाची में 92 साल के 92 years old की श्रीमती लीलावती कोलीचन, श्रीमती लीलावती कोलीचन पैदायशी नाम रामेश्वर की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 64 साल के 64 years old श्री जयराज सुकवरिया जो विवेक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 9 बजे इनकी पत्नी कविता सुकवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावाउचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। रोतन लेन एवेन्यू बियाटो कैथरबोन में 90 साल की 90 years old श्रीमती मायावंती मुनिया जो इंदू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज ढाई बजे रोतन लेन एवेन्यू बियाटो कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एवेन्यू बियाटो कैथरबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। टैगोर स्ट्रीट रोशनुआ में 74 साल के 74 years old श्री तिमल सिंह लुबिन जो कुमार के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और फ्यूअल में काम करते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनके बेटे विशाल लुबिन के घर टैगोर स्ट्रीट रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोतालोंग में 69 साल की 69 years old श्रीमती कमलावती बजन पैदायशी नाम मीतू जो कमलावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनके बेटे सूरज बजन के घर मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेवकुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। डॉक्टर इड्रिस कुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल में 77 साल के 77 years old श्री राजा सिवन गंगेन जो सिवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल बुध 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गंगेन के घर डॉक्टर इद्रिस कुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मोसेलमा सीताराम और ओरिएंटा वाकवा में 62 साल के 62 years old श्री रूप सिंह शत्रुघ्न जो गौतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और भूमि मंत्रालय में
पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस अफसर थे की मृत्यु हो गई है और थे आज 11 बजे इनके घर मोसेल मौसी

अमोघियता वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है। और अब कुछ विज्ञप्तियां सुनिए जो पुलिस की तरफ से आई हैं।

आपको बता दें कि पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी की है। कल रात के फसादों के चलते पुलिस जनता को आश्वासन देती है कि स्थिति पर नियंत्रण है और सभी जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती है। जहां जहां फसाद है, जहां जहां पर रात को परेशान मसले हुए थे, वहां पर पुलिस की भारी तैनाती है। ये भी खबर है कि कुछ गिरफ्तारियां की जा चुकी है और जांच शुरू की गई है। जो लोग इन घटनाओं में शामिल रहे उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। और ये भी खबर है कि जितनी भी सड़कें हैं, गाड़ियों की आवाजाही के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और जगह जगह पर पुलिस अफसर वहां पर तैनात हैं और ज़रूरी कदम वे उठा रहे हैं ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और बिजनेस मॉरीशस ने एक विज्ञप्ति जारी की है, यानी निजी क्षेत्र के लिए। ये बताया जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन की सीमित सेवाओं की वजह से और रुकावटों की वजह से वे वर्क फ्रॉम होम नीति को अपना रहे हैं। बिजनेस मॉरीशस अपने सभी कर्मचारियों को ऐसे मांग करता है कि वे सावधानी बरतें और सभी निर्देशों का पालन करें। सेंट्रल आपको ये भी बताते जाएं कि राष्ट्रीय परिवहन कंपनी NTC ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है और कहा कि आज वो सुचारू रूप से सेवाएं देगी, लेकिन कुछ टीमें अभी तक अधिकारियों के साथ बात कर रही हैं, लेकिन वक्त में कुछ बदलाव लाए जाएंगे। यानी उन समय के बारे में वो बता रहा है जब सेवाओं को प्रदान किया जाएगा और स्थिति पर NTC करीबी से नज़र रख रही है। तो आप हमारे फेसबुक पेज और MBC के साथ जुड़े रहिए, आपको वक्तन फवक्तन खबर मिलती रहेगी जो भी स्थिति के बारे में है।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सौरू एमबीसी के मिलर जुलर सहयोग से प्रस्तुत बाटे
2: नू ट्रावाई नू लाबेनिया।
1: लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में शिका एंड शाइनी कंपनी लिमिटेड जो बॉम्बू स्ट्रीट लोअर वेल में पावल जाला एगो वेल्डर खोजता जिकर दू बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो लॉरी हेल्पर खोजता लोडर और अनलोडर जिकर दू बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 57 62 23 15। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ब्लैक रिवर सी फूड लिमिटेड जो लाप्रोनर्स कोस्टल रोड ब्लैक रिवर में पावल जाला एगो फैक्ट्री वर्कर खोजता जिकर फॉर्म 3 बाटे और एगो सोफिया जिकर एगो प्राइवेट कार एंड गुड्स व्हीकल्स के वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया। जस्ती जानकारी खोजब टेलीफोनिक करिया 483 67 72 483 61 02। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में रामपा गैजेट पॉइंट कंपनी लिमिटेड जन वाया रोड रिविया जो रामपा में पावल जाला एगो असेंबलर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स खोजता जेकर दू बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 52 53 85 79। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। रिटेल के सेक्टर में बोप्लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड

जिन बोपला माओगानी में पावल जाला एगो शेल्फ वर्क खोजता इंटरव्यू करे खातिर हौजे पहुंच जाइया। आप्रिकासो करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। केटरिंग के सेक्टर में सेवन गोल्डन रेज कंपनी लिमिटेड जिन मोटोवे M1 नोवेल फ्रांस में पावल जाला एगो अकाउंट क्लर्क हो जाता।

आईटी संगे जानकारी बाते साथ में दू बरिस के एक्सपीरियंस चाहिला होई के साथ में खोजता एगो एडमिन ऑफिसर जेकर एडमिनिस्ट्रेटिव में डिप्लोमा बाटे और दू बरिस के एक्सपीरियंस चाहिला होई के और खोजता एगो सोफे जेकर फॉर्म 3 बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 55 00 00 52 न तपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है पे पॉइंट मनराज @yahoo.com नत रॉयल पब ऑफिस @gmail.com अप्लीका सुकरे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। रिटेल के सेक्टर में बाजार 707 लिमिटेड जन रॉयल रोड पेटी राफ्री में पावल जाला एगो पार्किंग मशीन ऑपरेटर खोजता अप्लीका सुकरे खातिर टेलीफोनिक करिया 58 85 77 77। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 16 अक्टूबर 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ठाकुर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जन रॉयल रोड प्लान दे रोश में पावल जाला एगो फील्ड क्रॉप लेबर खोजता जेकर दू बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 58 32 56 14। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। ऑटोमेटिव के सेक्टर में अमोटिसर सर्विस लिमिटेड जोन लोटो रोड मोफेटिल रोजबेल में पावल जाला एगो ग्रेड 1 एंड 2 ऑटोमोबाइल मैकेनिक खोजता जेकर ऑटोमोबाइल मैकेनिक में गो सर्टिफिकेट बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 59 19 13 04। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। टेक्सटाइल के सेक्टर में YEP International Limited, जोन Royal Road, Nouvelle France में पावल जाला, एगो embroidery machine operator खोजता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 677 11 24 और वो एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2026। रेस्टोरेंट के सेक्टर में Marina Property Limited, जोन Royal Road, Pamplemousses में पावल जाला एगो कुक खोजता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एगो असिस्टेंट कुक जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एगो वेटर जेकर एसी संगे 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे और खोजता एगो हैवी व्हीकल ड्राइवर जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 243 93 47 52 56 49 48। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 16 अक्टूबर 2026। टेक्सटाइल के सेक्टर में पूर्णिमा गार्मेंट्स लिमिटेड जोन रॉयल रोड बेलव्यू मोरेल में पावल जाला एगो मशीन ऑपरेटर खोजता जेकर फॉर्म 3 संगे 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइए। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में फेनिक्स बेवरेजेस लिमिटेड जोन पोंफेयर फेनिक्स में पावल जाला एगो ड्राइवर सेल्स पर्सन खोजता जेकर फॉर्म 4 संगे एगो वैलिड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बाटे साथ में 1 बरिस के एक्सपीरियंस साथ में खोजता एगो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर जेकर फॉर्म 4 संगे एगो वैलिड फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग लाइसेंस बाटे साथ में 2 बरिस के एक्सपीरियंस एगो इम्पैक्ट टीम अटेंडेंट जेकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस साथ में 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एगो फोरमैन जेकर एसी संगे 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो ट्रेलर ड्राइवर जेकर फॉर्म 4 संगे एगो वैलिड आर्टिकुलेटेड लॉरी ड्राइविंग लाइसेंस साथ में 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो ट्रेलर हेल्पर जेकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे साथ में खोजता एगो सेल्स अटेंडेंट जेकर फॉर्म 3 संगे 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो ग्लास वर्कर जेकर फॉर्म 3 संगे 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे ट्रेनी ऑपरेटर्स जिनकर फॉर्म 4 संगे टेक्निकल ट्रेनिंग बात MITD देने साथ में एगो फैक्ट्री वर्कर जेकर फॉर्म 3 बाटे एगो रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन जेकर फॉर्म 4 संगे 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो लेबोरेटरी अटेंडेंट जेकर फॉर्म 4 संगे केमिस्ट्री में जानकारी बाटे साथ में खोजाता एगो मैकेनिक ब्रुअरी मेंटेनेंस में जेकर फॉर्म 4 संगे टेक्निकल ट्रेनिंग बाटे MITD देने से और 2 बरिस के एक्सपीरियंस साथ में एगो इलेक्ट्रो टेक्नीशियन ब्रुअरी मेंटेनेंस जेकर एसी संगे एनते से 2 बाटे BT नत

0: City and Guilds na ta kono full certificate industrial electricity and electronics me aru dubari skill experience साथ में खोजा था एगो सोफेयर जिकर फॉर्म थ्वा संगे एगो वैलिड बस एंड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस संगे तीन बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे एगो मेंटेनेंस सिविल वर्कर जिकर फॉर्मिन संगे एंड से थ्वा औरु एगो ब्रेवे टेक्नीशियन बाटे साथ में खोजा था एगो क्यूसी ऑपरेटर औरु लैबोरेटरी टेक्नीशियन जिकर एचएससी बाटे साइंस सब्जेक्ट साथ में एगो प्रोडक्शन असिस्टेंट जेकर साइंस एग्रीकल्चर और केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बाटे एगो स्टोर अटेंडेंट जेकर एसी संगे कंप्यूटर लिटरेट बाटे और खोजता एगो बॉयलर ऑपरेटर जेकर एसी संगे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस न तक कोनो कोर्स चाहेला करे के बॉयलर ऑपरेशंस में एप्लीकेशन करे खातिर हाउजे पहुंच जाइया न त अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है recruitment@phoenixbev.mu जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोन करिया 601-2200 नता 57-29-94-47 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 31 मानी की 31 अक्टूबर 2026 जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ त ई भी सुनते चल कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एगो केटरिंग सुपरवाइजर खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/ एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एगो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://psc.govmu.org/ एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ सावान एगो ड्राइवर हैवी मैकेनिकल यूनिट रोस्टर पर खोजता और एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.govmu.org/ एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ घोंपो एगो ड्राइवर हैवी मैकेनिकल यूनिट रोस्टर पर खोजता और एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://ljsc.govmu.org/ और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 और ये भी सुनते चला प्राइवेट हाउस होल्ड के सेक्टर में लाक्लेमेंस के रीजन में एगो हाउसमेट कम गार्डनर के खोज बाटे एप्लीकेशन करे खातिर रिविया जुरां पर ईआईसी टेलीफोनिक करिया ई नंबर पर 412-69-25 साथ ही गुडलैंड्स के रीजन खातिर एगो हाउसमेट के खोज बाटे एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स ईआईसी टेलीफोनिक करिया ई नंबर पर 282-59-17 नता 282-59-18 ता ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू ला
1: kilohertz ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज
2: नोवल कर्विंग का प्यार भर नमस्कार स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है प्रीमियर लीग में इस सीजन कोवेंट्री सिटी की दूसरी जीत फ्रैंक लैम्पार्ड की टीम ने न्यूकासल यूनाइटेड को 4-1 से पछाड़ा इस जीत से कोवेंट्री सिटी अब रिलीगेशन जोन से बाहर है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह 6 अंक हैं उसके पास जबकि न्यूकासल यूनाइटेड के पास 8 अंक हैं वो 11वें यानी 11th प्लेस पर हैं अब इस शनिवार को इस सैटरडे के फिक्स्चर्स एवर्टन चेल्सी ये अर्ली किक ऑफ होगा 3:30 ब्रेटफोर्ड लिवरपूल फुलहाम हल सिटी मैनचेस्टर सिटी इप्सविच टाउन न्यूकासल यूनाइटेड एस्टन विला फिर संडे मैच बोर्नमुथ सन्डरलैंड ब्राइटन क्रिस्टल पैलेस 5:00 लीड्स यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट आर्सेनल ये 7:30 होगा स्पेन के ला लीगा में कल लेवेंटे और एफसी सेविला के बीच मैच ड्रॉ 3-3 इटली के सेरी आ में अटलांटा 3 वेनेजिया 1 टोरिनो 2 उडिनीजे 1 इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 1 मोहन बगान 0

0: चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के दूसरे मैच आज खेले जाएंगे। लॉन्स का मुकाबला स्पोर्टिंग से होगा, सबा का मुकाबला स्लाविया प्राग से, आर्सेनल लील, एथलेटिको मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्वागत करेगा, गलातासराय बार्सिलोना, इंटर मिलान क्लब ब्रुज, आरबी लाइप्ज़िग पेरिस सेंट जर्मन पीएसवी आइंडहोवन, वाइकिंग बायर्न म्यूनिख, विलारियल नापोली। कल भी मैच जारी रखे जाएंगे। कल के मैचों में मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मन, एस्टन विला फेनेरबाचे, लास्क लिवरपूल, रोमा रियल मैड्रिड। टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग्स में अलेक्जेंडर ज़वेरेव नंबर वन बनने वाला है। इंजुरी के कारण यानिक सिनर नहीं खेल पा रहा है। कार्लोस अल्काराज शंघाई मास्टर से बाहर हो गया, ऐसे में ज़वेरेव के लिए टॉप पोजीशन पक्का। जोकोविच भी शंघाई मास्टर से बाहर हो गया, उसे हुरकाज ने हराया। शंघाई मास्टर्स के लास्ट 16 राउंड में आज डेमिनो काचानोव, गया बेंसिच, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, बुब्लिच, हुरकाज, दाविदोविच, फोकिना। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: स्टूडियो की घड़ी में 7:10 आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति, और ये विज्ञप्ति है मालेअप क्योपिप के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें खासकर कुछ इलाके हैं रू क्लेमों शाहू, मालेअप क्योपिप के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 14 अक्टूबर को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं, और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: के मॉरिशस की लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से करजोड़ अभिवादन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं नवरात्रि का इस पावन नवरात्रि के इस पावन पर्व में। देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे और इसी ऊर्जा इसी शक्ति के साथ मैं हूँ रत्ना, पुनः उपस्थित हो चुकी हूँ आपकी सेवा में। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपकी सेवा में। 7:13 हो रहे हैं तो चलिए प्रथानुसार सुबह का नजराना कार्यक्रम की पहल की शुरुआत हम करते हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मोहाबिया।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है।

सुबह का नजराना कार्यक्रम और इसी के साथ आइए झलकियों के साथ आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आपको बताते चले कि आज रेडियो मॉरिशस पर कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आपके मनोरंजन के लिए। इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसी के साथ जी हां 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ। भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसे दिग्गज कलाकार की जो अभी बस इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब की, उनकी फिल्मों के गीतों के बारे में, उनकी जीवनी पर बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में एक छोटी सी मुलाकात में। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के सहयोग से और इसी के साथ एक भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और बिल्कुल सामाजिक पहलुओं पर बात होती है आज की चर्चा कार्यक्रम में, जो खास मंगलवार के दिन चलता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण होती है सुमिता सरकार की। और आपको ये भी बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड और आज के इस कार्यक्रम में साथ देंगी तुष्टि। जी हाँ, तुष्टि जो बैरिस्टर एट लॉ है और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में उनको हम सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। साथ ही साथ इसका सीधा प्रसारण होगा एमबीसी के तीसरे चैनल पर। आपको ये भी बताते चले कि इस कार्यक्रम का को पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर और शाम

कि 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच इसका कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम को आप देख पाएंगे एमबीसी के तीसरे चैनल पर। जी हाँ, 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 10 बजे के समाचारों के बाद मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित रहूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पर माता के भजनों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम, जिसकी पहल होगी शम्मे फरोजा उर्दू भाषा के कार्यक्रम के साथ, और इस कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी सैयदा सुबाई द्वारा, जो चलेगा दिन के 12 बजे तक। 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे स्वर तरंग, मराठी गीतों का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा सीता भाई दरमिया की ओर से। ठीक 1 बजे आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी आरसी द्वारा। 1:45 बजे अमिता का साथ रहेगा गुजराती गीतों के कार्यक्रम रंगारंग में। 2 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम, इसे प्रस्तुत करेंगे डेविड। 2:30 बजे हमारा दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगी रोशनी, चलेगा ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे तक। 4 बजे आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा कलाईवानी वीरन द्वारा। शाम 5 बजे आप सुन पाएंगे पुराने गीतों का सफर, भूले बिसरे गीत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी उषा कौर द्वारा। शाम के 6 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 6 बजे पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के पश्चात विविध भाषाओं के कार्यक्रम का कारवां फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक 6:30 बजे के करीब आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी हॉन्ग हॉन्ग। 7 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे तेलुगु कार्यक्रम रहेगा प्रस्तुतिकरण कृतिका की। शाम 7:50 पर मराठी गीतों का कार्यक्रम सुरेश रामा की ओर से। रात के 8:10 पर आप सुन पाएंगे भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम, जिसे प्रस्तुत करेंगी अनिता। रात के 8:40 पर महफिले शब, ये उर्दू भाषा का कार्यक्रम पेशकश रहेगी निसार अख्तर की। रात के 9 बजे आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम, जो नवरात्रि के उपलक्ष पर आधारित रहेगा, और ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा किरण जानकी की ओर से, जो चलेगा रात के 10 बजे तक। जी हाँ, 10 बजे से 11 बजे के बीच आप सुन पाएंगे भोजपुरी तट का कार्यक्रम, प्रस्तुतिकरण एक बार फिर किरण जानकी की। 11 बजे पर आप सुन पाएंगे सुनहरे पल, जहां पर पुराने गीतों को सजाया जाएगा नीलमणि की प्रस्तुति में ये कार्यक्रम रहेगा। रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे विविध भाषा के रखे हुए गीत, जो प्लेलिस्ट सजाई जाएगी, ओवरनाइट प्लेलिस्ट होगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। और आपको ये भी याद दिला दें कि अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में साथ ही साथ गोविंदन और वेंकटेश्वरा के व्रतम के अवसर पर सुबह 5:30 बजे यानी कल सुबह 5:30 बजे आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम तमिल भाषा में, गोविंदन के पर्व पर आधारित। और 5:50 पर आप सुन पाएंगे एक विशेष टॉक वेंकटेश्वरा व्रतम के अवसर पर, ये मॉरिशस तेलुगु महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की, साथ ही साथ बेहतरीन गीतों से सजाया हुआ आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। तो बस साथ देते रहिएगा, देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। देवी माँ की कृपा से कुछ ऐसे गीत भी हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, जो इस भक्ति को 4 चांद लगाएंगे। तो आइए फिल्म रागिनी का ये गीत लेते हैं गीता दत्त और आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में।

चलिए, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये गाना अचानक से रुक गया, क्षमा प्रार्थी हैं। और बिल्कुल 7:26 हो चुके हैं और आपका साथ हम दे रहे हैं कुछ ऐसे ही पुराने गीतों के साथ। और पुराने गीतों का ये जो सफ़र है बहुत ही लाजवाब लगता है। और चलिए इसी के साथ मज़ेदार गीतों के इस सफ़र में हम भी आपका साथ दे रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना, बिखरने के बहाने तो ढेरों मिल जाएंगे, आइए हम जुड़ने के अवसर हमेशा ढूंढें। कंप्लेन करने के लिए, शिकायतें करने के लिए तो बस आपको एक वजह चाहिए, पर जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए, इन छोटी छोटी चीजों को हमें नजरअंदाज करना है, ये देखना है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे ढूंढे, क्योंकि आज के समय में हमें सोल्यूशन ढूंढने वाले कम मिलते हैं, लोग बस प्रॉब्लम कहाँ है वो ढूंढने वाले ज्यादा मिलते हैं। सच कहा ना, प्रॉब्लम्स वैसे ही बहुत हैं, प्रॉब्लम्स को कम करने की वजह ढूंढें, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। और बिल्कुल हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना हमें करना है, मन को शांत रखना है, संयम धारण करना है, बस यही तो सिखाता है पर्व हमें। चलिए इसी के साथ आज का ये दिन सभी के लिए शक्ति ऊर्जा से भरपूर रहे, पर शक्ति का सही उपयोग करना भी बहुत ही जरूरी है, बुद्धि का उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। और इस गीतों के सफर में कुछ ऐसे ही गीतों के साथ आइए देवी माँ की आराधना करते हुए हम भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जी हाँ, इस वक्त हम चलिए जुड़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। लता जी की प्यारी सी आवाज़ है और गंगा की लहरें फिल्म से लिया हुआ ये प्यारा सा गीत।

सुबह का नजराना कार्यक्रम। दोस्तों कहते हैं ना, खुश रहने में खर्च नहीं लगता, पर हम कितने खुश हैं इसका दिखावा करने में बहुत ज्यादा खर्च लग जाता है, और फिर हमें लगता है कि ओए होए महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब क्या करें। देखा जाए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का फिर से जमाना आ चुका है, इसीलिए जितना साधारण तरीके से जिएंगे, जैसे हैं वैसे जिएंगे, उसमें मुझे लगता है ज्यादा खुशी हमें महसूस होगी। और चलिए इसी के साथ प्यार से हम जुड़े हैं आपका साथ देने के लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार गीतों के साथ। और भक्तिमय वातावरण इस वक्त चारों ओर छाया हुआ है, और इसी भक्तिमय वातावरण को बनाए रखते हैं शांति और सौम्यता के साथ। देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे, बस यही प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिल्मों के गीतों से लिए हुए कुछ ऐसे चुनिंदा गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों का दिल बहलाने के लिए। फिल्म है बहार आने तक, अनुराधा पौडवाल की आवाज और भक्तिमय गीत है, तो बस साथ मिलकर सुनते हैं। और बिल्कुल इस

की छोटी सी बात लेकर आ पहुंचे हैं हम, और जिसका हमेशा आपको इंतजार रहता है। तो चलिए इसी के साथ आपको सुनाते हैं ये अगली छोटी सी बात। कश्मीर के एक गांव में अजबामल नाम का एक व्यक्ति रहता था, और वो व्यक्ति बहुत ही संकी और उसकी हरकतें बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। लोग उसे अजबामल कहकर बुलाते थे क्योंकि उसकी हरकतें और व्यवहार बहुत ही अनोखे और अजीब हुआ करते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता था जिससे लोग हैरान परेशान से रहते थे। अजबामल का एक अनोखा स्वभाव था कि वो कभी भी किसी चीज़ को सीधा या सामान्य तरीके से नहीं करता था। अगर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वो उसे पाने के लिए सबसे अनोखा और अजीब तरीका अपनाता। गांव के लोग उसकी इन हरकतों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी उसकी दिलचस्पी और हंसी मजाक का जो हिस्सा, उसकी जो हरकतें थी वो कभी कभी हंसी मजाक का हिस्सा बन जाती। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव होने वाला था और सभी गांववासी तैयारी में लगे हुए थे, और अजबामल ने भी उस उत्सव में हिस्सा लेने का निर्णय ले लिया। लेकिन अपने ही अनोखे अंदाज में उसने सोचा कि वो अपने अनोखे तरीके से भगवान की पूजा करेगा ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो और उसे आशीर्वाद मिले। अजबामल ने एक बड़ा सा थैला लिया और उसमें तरह तरह की चीजें भर ली। उसने थैले में पत्थर, लकड़ियां, फूलों और कई सारी ऐसी अजीब अजीब चीजें, और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी उसने भरी जो अनावश्यक थी। जब वो पूजा स्थल पर पहुंचा तो उसने थैले को खोलकर सारी चीजें भगवान के सामने रख दी और हंसते हुए बोला, भगवान ये सब चीजें मैंने आपके लिए इकट्ठा की है, इन्हें स्वीकार कर ले। तो गांववासी अजबामल की इस हरकत पर हंसने लगे और उसे डांटने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान की प्रतिमा से एक दिव्य आवाज आई और कहा, बिल्कुल उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बिल्कुल हटकर थी और लोगों को भी बहुत ही अचंभा लगा कि

ये कैसे हो सकता है? कि भगवान अजूबामल, बिल्कुल एक आवाज आई, कहने लगे कि अजूबामल कि इस सच्ची श्रद्धा और विश्वास को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने वही भावना के साथ ये चीजें मेरे लिए लाई हैं और इतनी भावना के साथ तुम ये चीजें मेरे सामने रख रहे हो, तो बिल्कुल मैं इन सारी चीजों को स्वीकार करता हूँ। उसने अपनी अनोखी भक्ति से साबित कर दिया कि भगवान को बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से पूजा जाना चाहिए। और इस घटना के बाद गांववासी अजूबामल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे, उसको मानने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो भक्ति थी वो इतना श्रद्धा भाव से करते हुए भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए, पर अजूबामल ने कुछ ऐसी ही चीज़ों को लाकर भगवान के सामने जब रख दिया, उसके मन में श्रद्धा असली थी। और गांव वाले समझ गए कि हर किसी का जो है भक्ति और श्रद्धा का करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, ये छोटी सी बात, ये छोटी सी कहानी हमें बस एक चीज तो जरूर सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपने तरीके से भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करना महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों के तरीकों का सम्मान करना चाहिए। कई बार हम पूजा पाठ तो करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, माथा टेकते हैं, हर वो चीज़ करते हैं जो ईश्वर को जिस तरह से पूजा करनी चाहिए, पर कई बार इन सारी चीज़ों के पीछे हमारी जो भक्ति है वो कम पड़ जाती है। चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, बस मन की जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए। और आज के इस समय में बस भक्ति की ही कहीं ना कहीं कमी लगती है। भक्ति करनी है तो सच्चे मन से कीजिए। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला भाव का भूखा है, भक्ति का भूखा है। चलिए इसी के साथ देवी माँ की आराधना में सभी लोग लगे हुए हैं और देवी माँ की आराधना के साथ हम यही प्रार्थना करते चलें कि वे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमें बस बुद्धि प्रदान करें कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे करना है। आज के ज़माने में बस अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पूजा प्रार्थनाएं करें तो बिल्कुल हमारी पूजाएं प्रार्थनाएं अवश्य ही सफल होंगी। बस आज की ये छोटी सी बात किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी, कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा मांगते हैं।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम और इसी के साथ हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त प्यार से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज और फोन कॉल्स के लिए। यहाँ पर शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी और प्रेमिला जयमंगल, राधा बाल गोपिन जो है मोचिदा से, उनकी प्यारी बहन है वीना जी और उनके प्यारे बहनोई विनोद बिसेसर का जन्मदिन था 12 तारीख को यानी कल, जो रहते हैं खफ के। उनके 5 बच्चों की ओर से, नाती पोतों की ओर से और सभी बिसेसर परिवार की ओर से, खासकर उनकी प्यारी पत्नी वीना की ओर से उनको बहुत

सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यहाँ पर शिवरानी जी भी खोबुआ से जुड़ चुकी हैं, साथ है सुधीर शर्मा सुनाही, साथ है उनकी पत्नी रोशनी, श्री शिखा शिवान, साथ है राज, आरती, यश, अंजलि, कबीर, शर्मिला सीचन, उर्वशी रघुबा, कृष्ण कुमारी गौरी शंकर यूके से, और उनके प्यारे भैया बुब्बासे से है उमाकांत दीपचंद। लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी भी जुड़ चुके हैं, प्यारी पत्नी माला, दो प्यारी बेटियाँ प्रार्थना और प्रगति, साथ है बहन मानती, भगिनी है उर्मिला तुलसी, और सभी लक्ष्मण परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लाविट से है विजय बंधन, हमेशा की तरह प्यारी पत्नी रेखा के साथ तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और आपके सभी दोस्त जो काम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कौगुप से सुनीता जी भी हमेशा साथ देती हैं, प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी के साथ। पोफेया से गीता जी जुड़ी रहती हैं, अपने प्यारे पति रोहित, तीन प्यारे नाती आदित्य, आरव और तनीष, और प्यारी नातिन है जानवी, तीन प्यारे बेटे तीन प्यारी बहुओं के साथ। और रुजबेल से है नवीन लक्ष्मण जी, प्यारी पत्नी चित्रा के साथ। निवेदिता और सच्चिदानंद जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मेबक से ललिता और धनराज चरण जी अपनी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ जुड़े हुए हैं। मौडालबिया से राज और अमृता ओबिलक, न्यू ग्रोव से और रमेश और प्रीति जी खोबुआ से, फ्लोरियाल से माधुरी जी भी साथ दे रही हैं, माला सुमारू जी भी जुड़ चुकी हैं काट्रोबोन से, नुवेलफोंस से गायत्री जी भी बड़ी परेशान पानी की समस्या को लेकर। हम समझते हैं बिल्कुल आसान नहीं होता, जहाँ पर पानी पानी ही जीवन है। और चलिए आप अपने बेटे अजय, मामी है कल्याणी मोहन, भाभी है शकुंतला जो है मोताईलोंग से, आपकी प्यारी सखी गीता बाई के साथ जुड़े हुए हैं। घोंगोप से है श्यामा रघुनंदन जी, साथ है आपके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता जो है लिस्पेरोंस पीतों से, केशव और युदेश आपके दो प्यारे बिल्कुल भतीजे, और साथ ही साथ विश्वानी और वीना रामफल हमेशा हमारे साथ देती हुई। नुवेलफोंस से मानती जी जुड़ चुके हैं अपनी दो प्यारी बहनों के साथ, आरती, अनंती, साथ है उर्वशी, अनुषा, गिरिशा, मितिशा, साथ है भव्या, पुष्कल और हितांशु। कैटकुकु से जुड़े हुए हैं कमला जी, रामन और सीपोल परिवार के साथ। रिव्या जी पुस से है उदय जी जो इस वक्त खेतों में है, प्यारी पत्नी संगीता, और अपने प्यारे दामाद को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए 9 तारीख को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ भाई निखिल, उनके छोटे भैया जो हैं, बिल्कुल उदय जी के छोटे भैया निखिल, जिनका जन्मदिन था 12 तारीख को। समधन ज्योति जी, समधि जी है सुनील, साथ है बेटी कीर्ति, साथ है छोटा नाती खेयान और प्यारी बेटी स्मृति के साथ। सरजुलिया विलास से जुड़े हुए हैं नीता जी, नीता खेदनी जो अपनी प्यारी बेटी रुमा के यहाँ गए हुए हैं। सभी खेदनी परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ, और साथ ही साथ घोंबुआ से लीलो जी जुड़ चुकी हैं, साथ है आपकी खास सखियाँ शीला, गीता और किशोर जी। रन रिवर साउथ ईस्ट से शीला जी जुड़ चुकी हैं, सा बेटा विकास और गौसों, पति है साजन। केपिप से गीता जी जुड़ी हुई हैं, सुदेवी जी मोका से साथ दे रही हैं अपने पति और बच्चों के साथ। पुद्गदो आमलेट से हैं विश्वानी जी अपने परिवार के साथ। बौशेगी से लीला जी जुड़ी हुई हैं, कालिंदी जी हमारा साथ दे रही हैं, कौरमा से कालिंदी रामफल, नालिनी जोखन वाकुआ से साथ दे रही हैं, अनीता लाल जी आपको नहीं भूले, लाल जी परिवार गोगा, ईतू और नागेश्वर परिवार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। सूरज शर्मा सजादा हमारा साथ दे रहे हैं त्रियोले से, प्रेमिला से गुलाम साथ दे रही हैं, कौडमा से आपकी दो प्यारी बहनें रागिनी, साधना और सभी बेचू परिवार से, रिश्मा फ्लाक से साथ देती हैं, और त्रियोले से हैं सुयाराम खिलावन। आशा जानू जी हमारे साथ है कॉटेज से, ममा कुमारी साथ है, आरती, जीजू राज, शुभम और ऋषभ के साथ। और यहाँ पर अभी अभी एक मैसेज आया है फातिमा का जो है न्यू ग्रोव से, और बर्थडे विश करना चाहती हैं फराना इसोप को, उनके शौहर वाफिक की ओर से, मामा शहनाज, पापा नौशाद, भाई है सरफराज, चाची है सलमा, चाचा है आज़ाद, इरशाद, मुशीरा, इजान, नुरेजा, रिशाद और इसुप परिवार की ओर से जो है स्टैनली रोजिल से, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो फराना। और यहाँ लक्ष्मी जी भी बॉम्बू से जुड़ चुकी है अक्षय और आशनी के साथ। चलिए अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो हमें क्षमा करना, क्योंकि समय हो चला है समाचारों के साथ जुड़ने का। और बिल्कुल इस गीत को छोड़े जाते हैं आप सभी के लिए, मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में, मुलाकात आपकी करवाएंगे नाना पाटेकर साहब के साथ।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजलबा। आवाज़ समाचार सुना जा। देश में कल रात भेल दंगा फसाद के चलत आज स्कूल कॉलेज शैक्षिक संस्था MITD पॉलिटेक्निक सौरू यूनिवर्सिटी बंद रहेला। शिक्षा मंत्री पुष्टि कर लन जाबाते की ग्रेड 4 ग्रेड 5 NCE और SCHSE कैम्ब्रिज के इम्तिहान के रद्द कर देवल कर रहल बाते। पुलिस बोलेबा की स्थिति परिकाबू पा देवल पादेवर गल बाते, कुछ गिरफ्तारी हो गल बाते, जस्ती कर जात बाते। पुलिस कमिश्नर सबसे शांत रहे के मांग करता। रोजिल ट्रांसपोर्ट बोलेबा कि ओकर सेवा में रुकावट बा, सावधानी के तौर पर ऊ कोनू बस सेवा नहीं देवता। जबकि NTC बोलेबा कि ओकर बस सेवा धीमे रफ्तार से प्रदान करल जात बा। जहाँ तक मेट्रो के बात है त नुकसान के चलत सेवा थप बाते। कई घंटा के सर्जरी के बाद जख्मी एलोजी तुमा के शरीर से गोली निकाल देवल गल रहल बाते। ई ऑपरेशन कामयाब रहल, ओकर नफ्स के नुकसान पहुँचाए बगैर ई ऑपरेशन करल गल। काल रात स्वास्थ्य मंत्री भारती और मोशन डॉक्टर के शाबाशी डेलंजा। एलोजी तुमा के हालत के लेके जो न अफवाह बाते, मंत्री अनिल बेचू जनता से हई झूठी बात पर यकीन ना करे के मांग कर थी जा। और आपको ई भी बताते जाला कि प्रदर्शन के चलत जेंडर इक्वालिटी और बाल विकास मंत्रालय सूचित करता कि आज सब नर्सरीज और डे केयर सेंटर बंद रहेगा। जहां तक बिजनेस मुर्शस निजी क्षेत्र के बात है त बिजनेस मुर्शस सूचित करता कि उकर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम नीति अपनाए के चाहें। विदेश में नेपाल में सैलाब के आफत आलबा, कम से कम 15 जना लापता बाते। और उत्तर केंद्र में 200 से जस्ती घर तबा बाते, करीब 2,00,000 लोग के विस्थापन के चेतावनी मिलल। त इरहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
0: Your news on MBC Play.

मरनी की खबर सुने जा। मोसलमो सीताराम ओरिएटा वाकुआमे मोसलमो सीताराम ओरिएटा वाकुआमे तीन कोरी दुबरिस के 70 ओं श्री रूप सिंह शत्रुघ्न श्री रूप सिंह शत्रुघ्न जिन गौतम के नाम से जस्ती जान जात्रा लंग गुजर कल हवन इंकर माती आज ग्यारह बजे इंकर घरे मोसलमो सीताराम ओरिएटा वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो मामल के शमशान भूमि ले जा।

Valjai cremation today at 11 a.m. Dr. Idris Gomani Street, Plaisance Rosil me, Tinkuri Satra Bariske, 77 ans, Shri Raja Sivan Gangan, Shri Raja Sivan Gangan, Jun Sivan ke naam se jasti jana jatra len gujar kal hamal, inkar mati kal, budh ke 11 baje, inkar patni Vinoda Gangan ke ghare, Dr. Idris Gomani Street, Plaisance Rosil se utha ke antim sanskar khatir, Lashomia ke shamshan bhumi le javal jai, permission tomorrow at 11 a.m. मोताई लोंग में तीन कोरी नौ बरस के 69 श्रीमती कमलावती भजन, श्रीमती कमलावती भजन पैराशी नाम मीटू जिन कमलावती के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज 10 बजे इंकर बेटा सूरज भजन के घरे मोताई लोंग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खेवकुया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 10 a.m. टागो स्ट्रीट रोशनुआ में तीन कोरी 14 बरस के 74 श्री तिमल सिंह लुबिन, श्री तिमल सिंह लुबिन जिन कुमार के नाम से जस्ती जाना जात्र लन गुजर गल हवन इंकर माती आज ग्यारह बजे इंकर बेटा विशाल लुबिन के घरे टागो स्ट्रीट रोशनुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रोशनुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 a.m. तीन कोरी 19 बरिस के स्वसन जीजनेवों के जनाब शेख अली साहेब अमीर साहेब जनाब शेख अली साहेब अमीर साहेब जिन शेख अली के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन इंतकाल कर गल हवन जनाजा आज दो बजे उठा के दफनाए खातिर दरगाह कासी ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 2 p.m. रोतन लेन एवेन्यू बेटो कैथोबोन में चार कोरी 10 बरिस के 90 श्रीमती मायावंती मुनिया श्रीमती मायावंती मुनिया जन इंदू के नाम से जस्ती जान जात्रा लन गुजर कल हवन इंकर्मा थी आज दो बज के आधा इंकर घरे गोतैलीन एवेन्यू बियातो कात्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर एवेन्यू बियातो कात्रोबोन के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 2:30 p.m. मिशन क्रॉस रोड लालमाची में तीन कोरी 4 बरिस के 74 श्री जयराज सुखवरिया श्री जयराज सुखवरिया जिन विवेक के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकरमाती आज नौ बजे इंकर पत्नी कविता सुखवरिया के घरे मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे 9 a.m. गांधी रोड लालमाची में चार कोरी 12 बरिस के 92 श्रीमती लीलावती कोलीचंद श्रीमती लीलावती कोलीचंद पैराशी नाम रामेसा गुजर कल हवन इंकरमाती आज 10 बजे इंकर घरे गांधी रोड लालमाची से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी रोड लालमाची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे 10 a.m. मुसलमान सिख मोची मोंगू में तीन कोरी 1 बरिस के 69 श्री अनिल रीगा जन पेथोर के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर कल हवन इंकर माती आज नौ बजे इंकर पत्नी धनवंती रीगा के घरे मोंगू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दागुची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 9 a.m. डॉक्टर अमोप्ले रोड बोबासा में तीन कोरी 3 बरिस के 63 श्रीमती बसंती चुकराना नारायणन श्रीमती बसंती चुकराना नारायणन पैदाइशी नाम उकाल जिन संगीता के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर घरे डॉक्टर अमोप्ले रोड बोबासा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 p.m. सिनिक रोड प्लैन डे रोश में दुकुरी 15 बरिस के 55 श्रीमती कविता हरपाल पैदाइशी नाम दुबोरी जिन करुणा के नाम से जस्ती जाना जात्रा गुजर गल हवन इंकरमाती आज 12 बजे इंकर बेटी अदिति हरपाल के घरे सिनिक रोड प्लैन डे रोश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोचा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट नून अविन टेलफेयर कैथोबोन में चार कोरी 5 बरिस के 85 मोहतरमा बीबी आयशा अकबर अली मोहतरमा बीबी आयशा अकबर अली पैदाइशी नाम उमर इंतकाल कर गल हवन जनाजा आज 10 बजे कर बेटा रेजा अकबर अली के घरे एवेन्यू टेलफेयर कैथोबोन से उठा के दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टू डे 10 a.m. पॉम्पलमूस में तीन कोरी 10 बरिस के 70 श्रीमती जसवंती गोपुलदस श्रीमती
जसवंती गोपुलदोस पैदाशी नाम भैरव जुन माला के नाम से जस्ती जाना जात रलन गुजरगल हवन।

0: इनकार माती आज दुपजे इनकार पत्नी संजय गोपलदस के घरे पंपलुमुस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआ मौसा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमिशन टूडे एट 2 PM। क्लोजल नंबर एक फेनिक्स में तीन कोरी एक बरिस के स्वासंते ओजों जनाब का संभाई मीरुसैन जनाब का संभाई मीरुसैन इंतकाल कर गल हवन जनाजा आज ग्यारह बजे कर बेटा मोहम्मद मिदीन मीर हुसैन के घरे क्लोजल नंबर एक फेनिक्स से उठा के दफनाए खातिर पॉइंट दुलास्को के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टू डी एट 11 AM। सुबह लेन पायुडवाकुआ में दुकोरी छः बरिस के कारण सीजों श्री उमेश सुबल जिन रोशन के नाम से जस्ट जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज बारह बजे इंकर पिता प्रीतमलाल सुबल के घरे सुबल लेन पायुट वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुरफेनो नंबर 5 के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट नून। सो ग्रस्त परिवार के प्रति हमनी संवेदना प्रकट करत है जा।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। सुबह का नजराना कार्य

0: कार्यक्रम के बीच रखा हुआ ये सेगमेंट जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे दिग्गज अभिनेता के साथ। और फिलहाल बस कुछ ही दिनों पहले हमने एक ऐसे दिग्गज अभिनेता को खोया और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनकी मृत्यु की खबर से हिल चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ नाना पाटेकर की, जिनका जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ और 8 अक्टूबर 2026 को वे हमें छोड़ चले। हिंदी और मराठी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता जिनकी अदाकारी ने बहुत ही हमारी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उनके एक्टिंग स्किल्स को आप देख लीजिए, किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए। मेथड एक्टिंग में मानने वाले नाना पाटेकर साहब, जिनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड से सराहा गया और 4 फिल्मफेयर अवार्ड, साथ ही साथ 2 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड और 2 फिल्मफेयर अवार्ड मराठी, साथ ही साथ 2013 में उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनके योगदान के लिए फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखेगी। और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब के जीवनी पर, जिनका नाम था विश्वनाथ पाटेकर और बिल्कुल 1 जनवरी 1951 में मुरूड जंजीरा महाराष्ट्र जिले में उनका जन्म हुआ। भारतीय फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता जो साथ ही साथ लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। और नाना ने फिल्म हिंदी फिल्मों के मशहूर
1: रेडियो मॉरिशस पर
0: बिल्कुल अब एक ऐसे अभिनेता माने गए हैं जो बहुत ही अपने फिल्मों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से उन्होंने ये शोहरत हासिल की और उनके अभिनय के सभी कायल हैं। और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और वे इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने की स्टाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा मशहूर। उनके अभिनय के दीवाने आपको हर आयु वर्ग में मिल ही जाएंगे और आजकल तो हर एक मीम्स में उनकी हंसी के ठहाके आपको देखने में मिलेंगे ही मिलेंगे। नाना पाटेकर के पिता दीनकर पाटेकर और उनकी मां का नाम संजनाबाई पाटेकर और उनका मुरूड जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई उन्होंने सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से उन्होंने पूरी की। नाना पाटेकर का विवाह 1978 में नीला कांति पाटेकर से हुआ था, पर दोनों लंबे समय से अलग रहते थे। हालांकि उनका कानूनी तौर पर कभी तलाक नहीं हुआ। दंपति के 2 पुत्र थे, दुर्वासा पाटेकर और मल्हार पाटेकर। अफसोस की बात ये थी कि दुर्वासा का बचपन में ही उनका निधन हो गया था और मल्हार पाटेकर फिल्म निर्माण और निर्देशन से जुड़े रहे और उन्होंने फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम भी किया। नाना पाटेकर की करियर, फिल्मी करियर की बात करें तो उनकी जो फिल्मी करियर है वो शुरू हुई थी गमन से, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की थी और इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका, सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। साथ ही साथ याद होगा आपको क्रांतिवीर, खामोशी, यशवंत, अब तक 56, अपहरण, वेलकम, राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है। चलिए, परिंदा फिल्म की बात छेड़ ही दी है तो परिंदा फिल्म का ये गाना आपको सुनाते हैं।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आज के कलाकार नाना पाटेकर, जी हाँ, जिनका देहांत बस अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता जिनकी बस कमी हर एक को महसूस हुई, और साथ ही साथ 1978 में बनी फिल्म गमन के साथ उन्होंने

अपना आगमन किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और नाना पाटेकर ने कई सारी मराठी फिल्मों में भी काम किया। और सलाम बॉम्बे में उनकी जो अदायगी थी उसके लिए उनको एकेडमी अवार्ड भी नॉमिनेट किया गया था 1988 में, और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, साथ ही साथ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म, जहां पर उन्होंने एक क्राइम ड्रामा फिल्म परिंदा में काम किया था, और साथ ही साथ इस फिल्म ने उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करवाई 1989 की मूवी परिंदा के साथ, और उनकी खुद की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म रही प्रहार द फाइनल अटैक। 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और पाटेकर ने इस फिल्म में काम करके उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम भी प्राप्त हुए। और वैसे आपको ये भी याद दिला दे, प्रहार फिल्म में नजर आई थी माधुरी दीक्षित, और माधुरी दीक्षित के इस रोल में, आपको इनसाइड स्टोरी बताते चले कि फिल्म में कुछ उनका ऐसा किरदार था जहां पर उनके मंगेतर की मृत्यु हो जाती है, और वे एक आर्मी, एक सोल्जर थे, जहां पर उनको उनके चेहरे का वो जो दुख है, वो जो गम है, वो बिल्कुल उन्हें दिखाना था, उभारना था, जिसके लिए माधुरी दीक्षित को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी कि उनके चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं होना चाहिए, और इसमें माधुरी दीक्षित ने कुछ पाउडर और फाउंडेशन का यूज़ किया था बिना किसी को जानकारी के, और नाना पाटेकर ने उनको लिटरली उनके पास मेकअप उतरवाया था, उनसे कहा था कि बिल्कुल, बोले तो बिल्कुल मेकअप नहीं होना चाहिए उनके चेहरे पर, और उनको जिस तरह की फिल्म एक्टिंग चाहिए थी। और इस पर बिल्कुल माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि नाना पाटेकर के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर बिल्कुल एक मेथड एक्टिंग में मानने वाले एक्टर थे, और साथ ही साथ जब डायरेक्शन की बात आई तो इसमें उन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। चलिए, प्रहार फिल्म का ये गाना तो आपने सुना ही होगा।

0: नाना के जाने के बाद सच में कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि नाना पाटेकर, एक वेटरन एक्टर, 75 इयर्स की आयु में उनका निधन हुआ, उस दिन सच में सभी और कुछ ऐसा ही माहौल था जहां जिंदगी बहते हुए भी हमें बिल्कुल एक रुकावट सी महसूस हुई।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: प्रहार फिल्म के लिए उनको बहुत सारे क्रिटिक्स भी प्राप्त हुए, पर ये काफी कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी रही। और साथ ही साथ 92 में आई फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन, जहां पर उन्होंने काम किया था शाहरुख खान और जूही चावला जैसे उभरते कलाकारों के साथ। और इस फिल्म के लिए भी उनको बहुत ज्यादा प्रशंसा प्राप्त हुई थी। और आपको शायद याद होगा वो लंबा सा कोट और एक बढ़िया सी हैट, साथ ही साथ हाथ में डफली लिए उन्होंने इस गाने में क्या कलाकारी की थी। ये गाना काफी हिट हुआ था उस जमाने में। और हो सकता है कि हमारी डिक्शनरी में एक नया वर्ड शामिल हो गया, लवेरिया।

0: नाना पाटेकर एक ऐसे दिग्गज कलाकार, साथ ही साथ अंगार फिल्म 1992 में आई, साथ ही साथ उनको फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ इस फिल्म के लिए एज द बेस्ट विलेन, साथ ही साथ 93 में आई फिल्म तिरंगा, 94 में क्रांति वीर ने हिला के रखा सभी को, और साथ ही साथ इस फिल्म के लिए उनको नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए, और फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ फॉर बेस्ट एक्टर, साथ ही साथ अग्नि साक्षी 1996 में और खामोशी द म्यूजिकल 1996 में, और इस फिल्म के लिए भी उन्हें प्राप्त हुआ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। चलिए इसी के साथ क्रांति वीर की बात करें या खामोशी की बात करें, कई सारी ऐसी फिल्में जहां पर उनकी एक्टिंग ने बिल्कुल एक अलग सी छाप छोड़ी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हालांकि कई सारे गाने हैं जो उन पर फिल्माए नहीं गए पर उन्हीं के फिल्म के हैं, तो उसी फिल्मों के गीतों से हम आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं। और बेशक इस वक्त मॉरिशस में जो सिचुएशन है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि संयम धारण करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हम बढ़ावा ना दें, मन को शांत रखें। और बिल्कुल इस वक्त सभी ओर भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है, सभी ईश्वर से यही हम प्रार्थना करें कि हमारा जो छोटा सा मॉरिशस देश है, बिल्कुल इसे स्वर्ग माना गया है, पैराडाइस आइलैंड कहा गया है, तो इस पैराडाइस आइलैंड की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम अपना पूरा सहयोग दें।
1: नाम तुम्हारे।
0: और बिल्कुल रेडियो मॉरिशस आपका सुख दुख का साथी है, हमेशा की तरह आपको सभी अपडेट्स के साथ परिचित करवाता है, तो बस साथ देते रहे।

क्रांतिवीर का ये प्यारा सा गीत, और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जिन फिल्मों के नाम हमने अभी अभी लिए, ये सारे फिल्म तो सभी लोग जानते हैं।

ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी याद दिलाते चले कि पाटेकर साहब ने गमन फिल्म के साथ डेब्यू किया था, साथ ही साथ उन्होंने एक मराठी फिल्म की थी 1986 में माफी चा साक्षीदर। मराठी फिल्मों में उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे रोल्स किए। उन्होंने नाथुराम गोडसे का रोल किया था ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज लॉर्ड माउंटबैटन द वाइस रॉय, द लास्ट वाइस रॉय, जो 1986 में आई थी। और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे अभिनय किए आज की आवाज़ 1984 में, अंकुश मूवी 1986 में, प्रतिघात इन 1987, अंधा युद्ध 1987, मोहरे 1988 और उसी साल फिल्म आई त्रिशाग्नि, 87 में आई फिल्म आवाम, सागर संगम इन 1988। और उनकी जो परफॉर्मेंस थी अंधा युद्ध में, उसके लिए उनको फर्स्ट नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर।

फिल्म हम दोनों, जिसमें वे नजर आए थे ऋषि कपूर के साथ, और इस फिल्म की कॉमेडी भी बिल्कुल हटकर, मतलब इतनी ज्यादा सीरियस कॉमेडी नाना पाटेकर कर सकते हैं। ये तो उनकी कई सारी ऐसी फिल्मों में आपने देखा होगा। उनकी फिल्म आई थी अग्नि साक्षी, जिसमें उन्होंने एक सेडिस्ट हस्बैंड का रोल निभाया था, और इस फिल्म को भी नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इस फिल्म में वे नजर आए थे, अग्नि साक्षी फिल्म में वे नजर आए थे मनीषा कोइराला के साथ, एंड एट द सेम टाइम मनीषा कोइराला ने उनकी बेटी का रोल निभाया था फिल्म खामोशी में। शायद आपको याद होगा जो उन्होंने फिल्म ये की थी सीमा विश्वास के साथ। सीमा विश्वास और नाना पाटेकर ऑपोजिट, मतलब हस्बैंड वाइफ के रोल में नजर आए थे, जहां पर उनको एक ऐसी भूमिका दी गई थी पूरे फिल्म में उनको बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी मतलब उनकी आवाज नहीं थी इस फिल्म में, पर उनकी एक्टिंग बस इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। वैसे उनकी कई सारी फिल्म जैसे यशवंत, टैक्सी नंबर 9211, वेलकम वेलकम बैक, और उनकी जो अदाकारी थी फिल्म वेलकम में, आलू ले लो कांदे ले लो, कोई ऐसे रोल में किस तरह से कॉमेडी डाल सकता है, ये तो कोई नाना से सीखे।

और बिल्कुल उनकी अदाकारी दिल से सुनी गई, क्योंकि कई सारे लोगों ने उनकी अदाकारी को देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस किया होगा कि उनकी अदाकारी ने आपके रोंगटे खड़े किए होंगे। पर चलिए, ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और उनकी हेड मास्टरी नज़र आई थी पाठशाला फिल्म में, 2010 में ये मूवी नज़र आई थी। इस फिल्म में वे हेड मास्टर के रोल में नज़र आए थे और बिल्कुल शाहिद कपूर इस फिल्म में उनके साथ थे, आयशा ताकिया इस फिल्म में नज़र आई थी। और इस फिल्म में भी उनकी जो कंपोज्ड एक्टिंग थी, शांत स्वभाव वाले एक ऐसे हेड मास्टर की जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक नई दिशा दी। और इसी फिल्म के इस आखिरी गीत के साथ बिल्कुल दिल से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैसे आपको ये भी याद दिलाते चले, आज मॉरिशस भर में कई जगहों पर परिस्थितियां बहुत खराब है, तो हम सभी से मांग करते हैं कि आप अपने घरों में रहें और बिल्कुल सुरक्षित रहें, दंगों को बढ़ावा ना दें। ऊपर वाले से बस सभी के शांति की प्रार्थना हम करें। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिलाते चले कि आज की चर्चा का कार्यक्रम म्यूजिकल रहेगा, क्योंकि इन्हीं कारणों के चलते हमारे जो मेहमान हैं MBC तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सुमिता सरकार बिल्कुल आपका साथ देंगी 9 बजे से 10 बजे के अंतर्गत, और इसका सीधा प्रसारण केवल रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पाएंगे। और सच में इस गीत के साथ नाना को हमारा अंतिम सलाम।

चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को यही समाप्त करेंगे और अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ। किरण जानकी का साथ रहेगा और भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम बढ़ेंगे 9 बजे के समाचारों के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हम एगो ऐसन धरोहर पर बतियाब जोन खाली एगो पूजा ही नहीं है, बल्कि एगो एहसास, एगो महोत्सव है। जब मॉरिशस में 10 दिन तक सुबह शाम हिंदू परिवार के घर अंगना और मंदिर में पूजा के वातावरण रहेला, हर पूजा सामान के दुकान व्यस्त रहेला, साड़ी और कुर्ता में सब लोग नजर आवेला, गरबा और ढांडिया के नृत्य के आयोजन चलेला, और साथ ही उधर भारत में गंगा के माटी से माँ के आँख बनावल जाला, जब गरीब और अमीर और हर धर्म के व्यक्ति एगो पंडाल के सामने सिर झुकावेला, खासकर भारत में, त समझ जा कि दुर्गा पूजा चलाल बा। दुर्गा पूजा के अक्सर बंगाल के त्यौहार बोलल जाला, खास तौर पर भारत में, लेकिन सच्चाई तो यह है कि न सिर्फ पूरा भारत के आत्मा के उत्सव है दुर्गा पूजा, बल्कि सब मॉरिशन और भारतीय और साथ में मॉरिशन डायस्पोरा देश में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनावल जाला। दुर्गा पूजा है कहानी शक्ति के, जो महिषासुर जैसन अहंकार के खत्म कर देलक। ये कहानी है घर वापस आवे के। बोलल जाला बंगाल में इस समय माँ दुर्गा अपन लैका लोक संगे मैका आवेलन, और बेटी के स्वागत खातिर 10 दिन तक पूरा प्रदेश सजावल जाला। एकर महत्व खाली धर्म में नहीं है, ये एगो ऐसन महोत्सव है जहाँ भारत में कुम्हार के टोली में कारीगर लोग गंगा के मूर्ति बनावेलन सा, फिर कलाकार लोग पंडाल के ताजमहल से लेके मंगल ग्रह तक के रूप देवेलन सा, हजारन जना के रोजगार इस त्योहार से मिलेला। यूनेस्को एकदम सही बोलले बा कि दुर्गा पूजा धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन के सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर वर्ग हर धर्म के सब दीवार टूट जाला। 15 दिसंबर 2021 वो दिन है जब कोलकाता के दुर्गा पूजा के दुनिया नमन करलक, सलाम करलक। पेरिस में यूनेस्को के बैठक में भारत के

0: दुर्गा पूजा इन कोलकाता के मानवतावाद के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में शामिल करा गल। ये छोटा बात नहीं है। दुर्गा पूजा भारत के पहला त्योहार है जिसके सम्मान मिलल यूनेस्को के ICH लिस्ट में। इस सूची में पहला रहल योग, फिर कुंभ मेला और फिर रामलीला और एकर बाद दुर्गा पूजा और अब तक दीपावली भी एकर में अंकित हो गल बा। इस मान्यता के बाद दुनिया भर के लोग अब कोलकाता के गली में वो कला के देखे आवेलन सा जेकर हर बरिस बहुत ही धूमधाम से मनावे के इंतजाम होवेला। आप सब कोई के दुर्गा पूजा और नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ
2: चला दुर्गा पूजा पर बतियाला जा त एगो बढ़िया गीत सुनब जा अम्बे माँ। और है गीत है सुनीता ननकू की आवाज में और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हमनी के लेके जाए 9 बजे के समाचारों की ओर। चलिए इसी के साथ फिर हमारी और आपकी भेंट होगी 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस हमारा साथ देते रहिएगा। हमारे बाद आ रही है सुमिता सरकार आपका साथ देने के लिए 9 बजे के समाचारों के बाद।

0: स्टूडियो में आगे सुमेरा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार।
1: नमस्कार और आदाब। आपको बता दें कि आज मंगलवार 13 अक्टूबर को सभी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी सार्वजनिक सेवाएं भी परंपरानुसार दी जा रही हैं। आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ विज्ञप्तियां फेक हैं, यानी झूठी हैं, और इन पर यकीन करने से पहले आपको दोबारा निरीक्षण करना ज़रूरी है। देश में फसादों की वजह से आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने रात के दौरान ही ये फैसला लिया। यहां तक कि बच्चों और छात्रों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन रखने के लिए ग्रेड 4, 5 और NCE के इम्तिहानों के अलावा SC HSC के पर्चों को भी टाल दिया गया है। और प्रदर्शनों की वजह से जेंडर इक्वालिटी और बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचित किया कि आज सभी नर्सरीज और डे केयर सेंटर बंद रहेंगे। देश में इन स्थितियों के चलते ये बताया जा रहा है कि बिजनेस मॉरिशस ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है और उसका कहना है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नीति अपनाना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने सभी यानी कर्मचारियों से मांग की है कि वे मुश्किलों का सामना ना करने के लिए इन सभी निर्देशों का पालन करें। एलोजीटोमा की सर्जरी के वक्त कल देश के अलग अलग इलाकों में दंगा फसाद शुरू होने के बाद सैद क्वामी स्थिति काफ़ी बेकाबू हो गई थी। अबयाकोबी में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। बौकली में भी रात भर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती रही। बौकली, सैद ख्वा, अबयाकोबी, रेजिडेंस मोगालकों, रेजिडेंस आतली, पेटिट रिवियर, बॉम्बू, घोंगोब वगैरह में प्रदर्शन किए गए। और इनके दौरान अबयाकोबी में पुलिस अफसर पर गाड़ी चलाई गई। पुलिस कांस्टेबल शेख अशफाक मंगोहाली पर वार किया गया जो अपना ड्यूटी निभा रहे थे, वे घायल हुए। स्थल पर इलाके के सांसद ईशान जुमन गए थे। उन्होंने सबसे शांत रहने की अपील की क्योंकि ये देश सबका है और तोड़ फोड़ करने से नुकसान सबका होगा। रात के दौरान ही ब्रूनो लोगेट सैद क्वा में थे। उन्होंने लोगों से शांत रहने की मांग की और किसी की बातों में आकर देश के अमन को खतरे में ना डालने की अपील की है। विदेश में अमेरिका के एक मनोरंजन पार्क में एक रोलर कोस्टर में घटना पेश आई। एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए। एरियल तस्वीरों के मद्देनजर रोलर कोस्टर अटक गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। उनासी साल के 79 years old जनाब शेख अली साहेब उमीर साहेब, जनाब शेख अली साहेब उमीर साहेब जो शेख अली के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दो बजे दरगाह कासी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हम हमदर्दी हैं।
2: On MBC Play and MBC.mu. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
4: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

मंगलवार 13 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9:05 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार।

पर स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से आरंभ हुआ होगा और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीते, ऐसी कामना हम करते हैं। जहाँ कहीं से भी आप साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज का हमारा जो आज की चर्चा कार्यक्रम है, ये म्यूजिकल होने वाला है, जहाँ पर हम जीवन में शांति के महत्व पर बात करेंगे। शांति अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, शांति अपने आप में एक अनुभूति है जो कहीं ना कहीं हम अपने भीतर से अनुभव करते हैं। कभी कभार जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। कभी कभार हमारे घर ही के माहौल ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर मन को शांत करना बहुत ही कठिन लगता है। कभी कभार हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो रही होती है जिन पर हमारा बस नहीं चलता है, और जब ऐसे हालातों में हम पड़ जाते हैं तो एक दूसरे का साथ देना बहुत आवश्यक होता है, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत आवश्यक होता है और शांति को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए जीवन में शांति का अर्थ क्या है। और जीवन में शांति की बात करें तो शांति हमारे जीवन में एक ऐसा अनमोल जो है रत्न है जिसकी कीमत दुनिया में कोई भी दौलत नहीं लगा सकती, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना कहीं बिकती है, जिसे ना हम खरीद सकते हैं, जिसे ना हम पा सकते हैं, इसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध, झगड़ा या विवाद का न होना ही नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं का संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार होता है ना कि मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, क्योंकि आने वाले चीज़ों पर या होने वाली चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता, तो ऐसे में हमारा मन विचलित होने लगता है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा या क्यों हो रहा है, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जब हमें जो है हमारे मुश्किलों के हल नहीं मिलते हैं, तो मन अशांत होने लगता है और ऐसे में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिस पर बाद में हमें अफसोस होता है। तो मन को शांत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और हर एक धर्म में शांति का अपना ही बड़ा महत्व है। हर कोई शांति से रहना, भाईचारे की भावना से रहना, इस पर जोर देता है और हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को भी बहुत ही अहमियत देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानवीय मूल्य हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये मूल्यों से ही एक व्यक्ति की पहचान होती है, एक व्यक्ति को जाना जाता है। और जब हमारे मन में, कहते हैं ना कि शांति होती है, तो तब हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ और समझदारी के साथ संभाल कर हर एक कदम उठाते हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति, हर मनुष्य सफलता चाहता है, पैसा चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, और इनके लिए हम भागते रहते हैं, दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। कभी कभार हम अपने परिवार को भी अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर नहीं कि परिवार हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही इस तरह से कार्य में उलझ जाते हैं कि अपने परिवार को ही समय नहीं दे पाते हैं। और देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता की उम्र बढ़ जाती है और हर कोई अपने अपने कोने में अपने अपने तरीके से समय को व्यतीत कर रहा होता है, और जब समय हाथ से निकल जाता है तब हम अफसोस करते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस करने के बजाय यदि हम जीवन की चीज़ों को अच्छे से जो है ले जाए आगे, हर एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो जीवन जो है अपने आप में बहुत अच्छा होने लगता है। और हर कोई चाहता है कि अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे, और इसके लिए हर कोई परिश्रम करता है। वास्तव में जीवन की असली खुशी, कहते हैं, तभी मिलती है जब हमारे पास जो कुछ है उसी में हम संतुष्ट होते हैं, उसके लिए एक कृतज्ञ हृदय होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जीवन में हमें जो नहीं मिल रहा होता है हम उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सुख सुविधाएं हमारे पास ऑलरेडी है, जो कुछ हमें मिला है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मन उसके पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं है, जिसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसा करने से मन की शांति तो खोती ही है। और जब मन शांत नहीं होता है तो मन में अच्छे विचार नहीं आते हैं, और अच्छे विचार नहीं होते हैं तो इसका हमारे कर्मों पर भी बड़ा ही असर पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को शांत रखना, अपने

मन को शांत रखना, ताकि क्योंकि मन शांत होता है तो आसपास का वातावरण भी अपने आप में शांत हम महसूस करते हैं। चलिए एक गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: की चर्चा इस कार्यक्रम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो मॉरिशस पर इस प्रोग्राम को इस समय आप सुन रहे हैं। और श्रोताओं, जीवन में शांति का बड़ा ही महत्व है, जीवन में अपनेपन का बड़ा ही महत्व है। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो शांति सिर्फ हमारे जीवन में नहीं बल्कि समाज में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब एक व्यक्ति समाज में शांत चित्त से हर एक कार्य को करता है तो उनके बीच में संवाद और समझौता बढ़ जाता है। ऐसे ही लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपना जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान को व्यक्त कर पाते हैं। शांति के बिना सामाजिक संघर्ष और तनाव बढ़ता है जो सभी को प्रभावित करता है। और जिस प्रकार घर में एक व्यक्ति अगर किसी कारणवश बीमार होता है तो किस तरह से घर के हर एक सदस्य उनके लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या हुआ, कब ठीक होंगे, ईश्वर जो है जल्दी से इन्हें ठीक कर दे। उसी प्रकार समाज में भी अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो उसका सीधा असर हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। और मानवता की बात करें तो मानवता की एकता ही इस दुनिया का एक मूल मंत्र है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के विकास में एक दूसरे का योगदान देते हैं और एकता से समाज में एक नई ऊर्जा आती है, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने का जो है इससे मौका मिलता है। क्योंकि जब चारों ओर शांति होती है, जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक दूसरे की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम तो अकेले रह नहीं सकते हैं, हमें एक दूसरे पर जीने के लिए निर्भर रहना पड़ता है किसी न किसी वजह से। जैसे परिवार में अगर माता पिता नहीं हैं तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे, अगर परिवार में भला भरा पूरा परिवार नहीं।

है तो अकेलेपन का एहसास होता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, वो अकेला रहता है, तो उसे परिवार की कमी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता हमेशा से पड़ती है, और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें एक दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती ही है। जब हम एक दूसरे का साथ मिलकर रहते हैं तो हमारे बीच भावनाएँ जो है और भी मजबूत होती है, और इससे समाज में एकता बनती है, और एकता जब समाज में होती है तो एक दूसरे को लोगों से जोड़ती है और अकेलेपन से हमें दूर करती है, उदासी हम कम महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि खुशी जो है बांटने से हज़ार गुना और बढ़ती है, और ये जो दुख है बांटने से कम होता है। तो इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और शांति और एकता से ही मानवता का विकास होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ समर्थन करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, सकारात्मक चीज़ों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, तो वो समर्थन कहीं ना कहीं आगे चलकर सफलता में परिवर्तित हो जाता है, और नए विचार, नई दिशा मिलती है विकास करने के लिए कदम। जैसे ना एक व्यक्ति एक भलाई का कदम आगे बढ़ाता है तो उसको देखकर और भी लोग प्रेरित होते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। इस प्रकार विकास सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि परिवार का होता है, समाज का होता है, और देश का भी होता है। और कहीं ना कहीं विकास की बात करें तो एक समाज के विकास में हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। एक देश के विकास में हर एक देश के नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वो जहाँ रहता है, वो जो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस प्रकार से भी अपने जीवन को आगे ले जा रहा है, उसके जीवन में शांति हो, उसकी मन की स्थिति अच्छी हो, आसपास का वातावरण अच्छा हो। और कहीं ना कहीं ये हमें एक अच्छे मानवीय गुण को समझाने में भी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि इन्हीं गुणों के चलते तो हमें जान हमें जो है लोग जानते हैं। एक व्यक्ति की लोग प्रशंसा कब करते हैं, एक व्यक्ति को धन दौलत के लिए नहीं जाना जाता है, क्योंकि धन दौलत और पैसों की बात करें तो ये समय के साथ आज है, शायद कल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का अच्छा आचरण जो होता है, अगर वो व्यक्ति के जाने के बाद भी उसे उस अच्छी बात के लिए याद किया जाता है। तो यदि इन्हीं बातों पर आप भी अपने विचार बांटना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है 402-808-5 पर। और ज़िंदगी बिना प्यार के हमारी अधूरी है, बिना अपनेपन के अधूरी है, बिना मन के शांति की अधूरी है। तो चलिए यहाँ पर एक और गीत जोड़ते हैं। आज की चर्चा।

0: ज़िंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। इस प्यार की अगर हम बात करें तो प्यार जीवन के हर पहलू में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर नफ़रत के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। प्यार जो होता है लोगों के मन को शांत करता है, प्यार जो होता है लोगों के मन में अच्छी भावनाओं को आने देता है, प्यार जो होता है हमें सब कुछ अच्छा देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, प्यार जो होता है ये हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, प्यार जो होता है वो हमारे संबंधों को मजबूत करता है, प्यार जो होता है हमारे विश्वास को और भी गहरा करता है, और यही प्रेम और अपनापन हम अपने देवी देवताओं के प्रति भी जो है व्यक्त करते हैं, है ना? क्योंकि प्यार के बिना जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, प्यार के बिना जीवन में सब कुछ जो है अधूरा होता है, और जीवन में अगर कुछ अधूरा होता है तो फिर जीवन की पूर्णता को किस तरह से हम अनुभूति कर पाएंगे, किस तरह से महसूस कर पाएंगे। और प्यार की इस भावना की बात करें तो इस दुनिया में अच्छी भावनाओं की बहुत ही आवश्यकता है। लोग एक दूसरे के दुख और सुख में एक दूसरे को समझे ये बहुत आवश्यक होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो वे एक दूसरे से जो है अपने प्रेम को व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता है उसे व्यक्त कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है तो ये समाज को, परिवार को और देश को और भी मजबूत करता है। शांति और एकता का समर्थन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये शांति का पाठ पढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे बच्चे जो हमारा आने वाला कल होते हैं, हमारे देश का भविष्य होते हैं, समाज के निर्माण में, समाज की प्रगति के लिए उनका बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते तो बच्चों के बीच में ये समझ, ये शांति, ये भाईचारे की भावना होना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं शांति और एकता जो है ये एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, और वैसे ही हम भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना। एकता के बिना समाज में भेदभाव बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर विकास नहीं हो पाता है, हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के दुख में सहयोगी बने, उनके दुख को कम करने का प्रयास करें, और सुख है तो उस सुख को बांटने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं जो है जीवन की उलझने तो सभी को है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो पूरी तरह से सुखी है या उसके जीवन में सब कुछ है। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ सबके लिए छूट ही जाता है, लेकिन छूटने का मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन में कुछ नहीं मिला। छूटने का मतलब ये भी होता है कि शायद अब हमें जीवन में कुछ नया सीखना चाहिए, और हर बदलाव अच्छाई के लिए हो, हर बदलाव जो है सकारात्मकता लाए हमारे जीवन में, और हर बदलाव जो है हमें प्रगति की ओर ले जाए। तो ऐसे बदलाव को हमें सदैव चुनना चाहिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन हमारे जीवन में होता है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए होता है, नई चीज़ों को जानने के लिए होता है, नई चीज़ों को समझने के लिए होता है। और एकता के बिना समाज अधूरा होता है, क्योंकि विकास नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी, तो फिर लोगों में आपसी मनमुटाव तो बढ़ जाएगा ना। तो मनमुटाव को कम करने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बहुत आवश्यक होती है, और कभी कभार यही चीज़ें जो है समाज को एक साथ लाती है। और इसलिए एकता और शांति का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। मानवता को एक नई दिशा देने के लिए हमें एक दूसरे का समर्थन अवश्य करना चाहिए, लेकिन ये जो समर्थन है सदैव सकारात्मक चीज़ों के लिए हो, इसका भी ध्यान देना होता है। कभी कभार हम अनसुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आजकल तो हम जो है AI के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर चारों ओर एक दिन में न जाने कितनी हज़ारों खबरें हम सुनते हैं, देखते हैं, और कभी कभार ऐसी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं जो सत्य है ही नहीं। कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है उसमें कितनी सच्चाई है इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है, इस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और कभी कभी अंधविश्वास के चलते कहीं हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, कहीं हम कोई गलत कदम ना उठा ले, और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो जिन भी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं अपने आसपास, या सुन रहे होते हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए इन इंफॉर्मेशन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे भीतर ये चेतना होनी चाहिए कि ये सारे जो चीज़ें हम देख रहे हैं या ये सारी खबरें जो हमें मिल रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है। जो भी सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्या वो सोर्सेज पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या हम इनकी बातों पर यकीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है नाप तोल कर हमें जीवन में अपने जो है फैसलों को करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि सही समय पर सही खबरें सब तक पहुँचे, ताकि हर एक व्यक्ति को सच्चाई की जानकारी हो और तथ्यों के साथ उसे प्रमाण भी मिले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। और मानवता को नई दिशा प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं समाज में एकजुट होकर हमें रहना बहुत आवश्यक होता है। हम जो है सामाजिक न्याय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, अपने सम्मान अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं किसी भी बात का हल नहीं है। बात का हल सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन से होता है, वार्तालाप से होता है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करते हैं, क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना कि अच्छी संगत का होना बहुत आवश्यक होता है जीवन में, अच्छी संगति का होना बहुत आवश्यक होता है, अच्छे लोगों के साथ मिलजुल कर बड़े बुज़ुर्गों की बातों को सुनना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके पास जीवन का अनुभव होता है और इन्हीं अनुभवों के चलते हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और शांति और एकता के ज़रिए ही सुख और समृद्धि आती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास को बताते हैं, अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का कहीं ना कहीं शांति और एकता ही एक रास्ता होता है, और इसी प्रकार से जो है समाज में खुशहाली आती है।
1: आज

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर समझा था, पत्थर। मैं रास्ते से भटक गया था भगवान, भूल गया था कि तुम इस तरह भक्तों की परीक्षा लेते हो। पांडवों को दुख भूल गया, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भूल गया, भूल गया कि राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो।
2: आज का ये दिन
0: मंगलवार 13 अक्टूबर को MPC3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नास्ते 1983 की मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पर फिल्माई गई नास्तिक।
2: पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल।
0: MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
3: मेरी जागी तो है ये, तू क्या जाने, यही तो एक सूट है जो हर महीने की पहली तारीख को मेरी गरीबी छुपा लेता है। एक एक पैसा बचा कर बड़ी मुश्किल से सिलवाया ये मैंने। अरे ये सूट पहनकर राजा सचमुच का राजा लगता है। हाँ।
4: रहे झोपड़ों में, ख्वाब देखे महलों के।
3: अरे अच्छे दिनों के ख्वाब नहीं देखेंगे तो गरीब घुट घुट के मर जाएंगे।
2: रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बन गए।
0: मंगलवार 13 अक्टूबर को MBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मोहब्बत की आरजू 1994 की ये मूवी ऋषि कपूर और डैनी डेंजोंगपा पर फिल्माई गई मोहब्बत की आरजू।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: आज की चर्चा।
2: चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज हम जीवन में शांति के महत्व पर बात कर रहे हैं। शांति कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। खुशी और शांति एक दूसरे के गहरे स्वरूप है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अच्छी नौकरी होगी, अपना घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, पैसा होगा, समाज में सम्मान होगा, तब जाकर हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन में कभी कभार कई व्यक्तियाँ ऐसे होते हैं या कई अनुभव हमें ऐसे होते हैं कि कभी कभार बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। क्योंकि शांति और खुशी की यदि हम बात करते हैं तो ये धन दौलत से नापी नहीं जाती है। ये मन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जीवन में हम कई बार ऐसी खुशियों से दूर होते जाते हैं। जीवन में कभी कभार एक दूसरे की देखा देखी के चलते हम अपने गुणों को पहचान नहीं पाते हैं। एक दूसरे के जैसा बनने के चलते हम अपने भीतर जो शक्ति है उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब ईश्वर ने हम सबको बनाया है, जब भगवान ने हम सबको बनाया है, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर बनाया है। हर एक व्यक्ति की कमज़ोरियाँ भी होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी शक्तियाँ भी होती है। और समय के साथ साथ हमें अपनी कमज़ोरियों को भी समझना चाहिए और हमें समय के साथ अपनी शक्तियों को भी समझना चाहिए। लेकिन कमज़ोरियों को जब हम समझते हैं उसे कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, उन कमज़ोरियों को ताकत बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हम अपने लाइफ को बेहतर बनाने का जो प्रयास है ये हर रोज़ करते हैं। हर रोज़ हम उठते हैं, अपने कामकाज पर जाते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और यही अच्छे कर्म जो है हमारे भविष्य को एक अच्छी दिशा प्रदान करता है। और जो शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं उन शक्तियों का दुरुपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। कई लोगों के लिए बल, शक्ति की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होती है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सम्मान है, तो इसकी वजह से मैं जीवन में बहुत शक्तिशाली हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं शक्ति ये नहीं है कि मेरे पास कितना है, शक्ति ये है कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ। शक्ति ये है कि मेरे भीतर सामने वाले व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान है, मैं अपने पड़ोसी को कितना समझ पाता हूँ, मैं उसके दुख में शामिल हो पाता हूँ या नहीं, मैं कहीं ना कहीं अपने अच्छे कर्म के द्वारा समाज में अपना योगदान दे पा रहा हूँ या नहीं। यह अपने आप में शक्ति होती है। क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आचरण में उन अच्छी चीज़ों को दिखाई देना प्रत्यक्ष रूप से हर कोई देख पाता है, हर कोई समझ पाता है। और आज के आधुनिक युग की बात करें तो आज का युग तकनीकी युग है, आज का युग तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जीवन शैली का युग है। अभी पलक झपकते ही मानो कुछ नया आविष्कार हो जाता है, पलक झपकते ही कुछ नई चीज़ आ जाती है। मोबाइल बोलिए, फ़ोन बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए, इंटरनेट बोलिए, ये सब जो है हमारे जीवन का इस तरह से हिस्सा बन गए हैं कि क्या कहें। लेकिन कभी कभार यही चीज़ें हमारे मन को अशांत भी करती हैं, क्योंकि इन सभी पर हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, हमारे बच्चों पर होता है, हमारे परिवार के सदस्यों पर होता है। और अगर परिवार पर इन सब का प्रभाव पड़ रहा है तो हम सोच ही सकते हैं कि समाज पर इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए हमें जो है ऑब्वियसली आज के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना एक आवश्यकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन को नियंत्रित करने नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन की जो भी पहलू है, हमारे जीवन के जो भी चीज़ें हैं, उस पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए, हमारे सकारात्मक विचारों का होना चाहिए, हमारे सकारात्मक आचरण का होना चाहिए, हमारे अच्छे जो है बर्ताव का होना चाहिए। किसी और की, कोई और हमें प्रभावित करे, कोई और हमारे जीवन को चलाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, हम लोगों से प्रेरित अवश्य हो सकते हैं। कभी कभार हम जीवन में फंस जाते हैं, हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता है, तो हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, हम अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारे मेंटर होते हैं, जिन पर हम विश्वास कर पाते हैं, है ना। क्योंकि इन सब के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है, जो हमारे जीवन को जो है सकारात्मकता से प्रभावित करे, अच्छे विचारों के द्वारा या उनके अच्छे कर्मों से हम प्रभावित हो। क्योंकि बहुत कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है जिसे सोच कर या जिसके बारे में सोच विचार कर उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही है, लेकिन किस तरह से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ही बस में होता है।
1: आज की चर्चा।

जी हाँ, आना जाना लगा रहेगा, दुख आएगा, सुख आएगा। सुख दुख जो है जीवन में आते जाते रहते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हमारी

0: प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर हमारा नियंत्रण अवश्य होता है।
1: आज की चर्चा।
0: श्रोताओ, हम यही कह सकते हैं कि शांति जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मानवता के अस्तित्व की एक गहरी जरूरत है ये। पैसा खर्च हो जाता है, पद प्रसिद्धि जो है समय के साथ बदल सकते हैं, सुख सुविधाएं आज है शायद कल नहीं हो, लेकिन शांत मन हमेशा हमें हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस शांति को जीवन में बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शांति सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि जीने की एक कला है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन की अनेक कठिनाइयों के बीच खुश रहना सीख लिया। और कहीं ना कहीं अफवाहों से हमें बचना चाहिए, फेक न्यूज़ से हमें बचना चाहिए, ऐसी खबरों से हमें बचना चाहिए जो हमारे भीतर, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में असंतुलन पैदा करती हैं। कहीं ना कहीं हमें उन खबरों पर विश्वास करना चाहिए जो ऐसे सोर्सेस से आता है जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ये जो प्रेम और सम्मान की भावना है, इसे सदा बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा, ये जो कार्यक्रम है, ये समाप्त होने को चला। आपने इतने प्रेम से आज भी हमारा साथ दिया, इसके लिए आभार। आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। 10 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम को। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: आज की

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।

नमस्कार और आदाब। देश भर में अभी माहौल बिल्कुल शांत है। सभी सड़कें गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुली हैं। शांति और सुरक्षा का आश्वासन रखने के लिए मुख्तलिफ रणनीतिक इलाकों में पुलिस की विभिन्न इकाइयों के अफसरों को तैनात किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम सुचारू तरीके से चल रहा है। सभी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां जारी हैं। सभी

0: तक निजी क्षेत्र की बात है, बिजनेस मॉरिशस ने हिफाजती कदम के तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का उपाय चुनने की मांग की है। बॉबू में पुलिस के वाहनों पर वार किया गया है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में भी तोड़ फोड़ की गई है। बॉकली का पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह नष्ट है और वहां पर भी पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। यूनाइटेड बस सर्विस एम्प्लॉयज ने एक विज्ञप्ति जारी की है। पुलिस के आश्वासन और अधिकारियों द्वारा स्थिति पर काबू पाने के बाद UBS की बसें सामान्य रूप से कार्यरत हैं। वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत आज से यानी कल रात से लोग ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए लोगों को दफ्तर या फिर अपने सरनेम के हिसाब से दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। वे ऑनलाइन ही ये प्रक्रिया किसी भी दिन पूरी कर सकते हैं और उन्हें 15,000 रुपये की लागत पर वाटर पंप और वाटर टैंक से लाभ मिल सकता है। विदेश में 30 से ज़्यादा साल बाद कनाडा का एक बहुत बड़ा व्यापारिक डेलीगेशन भारत गया हुआ है। करीब 300 बिजनेस डेलीगेट्स भारत गए हैं जहां पर इस साझेदारी की नई संभावनाओं को लेकर बातचीत की जाएगी। विभिन्न सेक्टरों को अहम किरदार के तौर पर रखा जा रहा है ताकि आर्थिक संबंध और मजबूत बने। इसके दौरान सेपा को लेकर भी बातचीत होगी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कनाडा और भारत के बीच। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कोलाबू मोतालोंग में 73 साल की 73 years old श्रीमती कृष्णावती रामप्रसाद, श्रीमती कृष्णावती रामप्रसाद पैदाइशी नाम महाबीर सिंह जो चिफिया के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई है। अर्थी गुरुवार को साढ़े नौ बजे इनके बेटे आतिश रामप्रसाद के घर कोलाबू मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवकुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 9:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 kHz पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

वर्ष की लहरों पर भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। हृदय की गहराई से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सेवा में पुनः उपस्थित हो चुकी है रत्ना, हमारा सप्रेम नमन स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे कुछ भक्तिमय भजनों के साथ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 10:15 बजे आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन है। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम त्रातारमिंद्रमवितारमिंद्रम हवे हवे सुहवं शूरमिंद्रम। ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्। हुवेनुशक्रं पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविर्मघवा विद्विन्द्रः। हृदय से प्राण प्रिय प्रभु पर भरोसा रखने वाला उपासक अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक छोटे बड़े संग्राम में, प्रत्येक दुख सुख हानि लाभ मान अपमान यश अपयश आदि के अवसर पर उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर को स्मरण करते हैं। ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणोर्चन्त्यत्वकर्मकीर्णः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मिरे। जो सैकड़ों उपकारों का करने वाला प्यारा और सब जग से न्यारा परमेश्वर हैं, गायक उसको गाते हैं, स्तुता उसकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा ज्ञानी विद्वान उसका व्याख्यान करते हुए उसको श्रद्धा भक्ति से ऐसे उठाए उठाए फिरते हैं जैसे कि राष्ट्रभक्त दीवाने होकर राष्ट्र का ध्वज फहराए फहराए फिरते हैं। ओम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा विद्वांसं शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु। उपासकों को चाहिए कि वे शुद्ध स्वरूप परम पवित्र परमेश्वर की अपने शुद्ध पवित्र व्यवहारों से युक्त होकर शांतिप्रद कल्याणकारी सामगानों से उसकी स्तुति करें, भजन करें। ऐसे ही साधकों को प्राण प्रिय प्रभु संपन्न होकर आशीर्वादों की वर्षा करते हैं जिससे वे सदा निहाल रहते हैं, तृप्त रहते हैं। ओम प्रत्यस्मै पिबीषते विश्वानि विदुषे भर अरंगमाय जग्मये पश्चादध्वने नर। उपासक को चाहिए कि वह भक्तों के प्यारे सर्वज्ञ अत्यंत गतिशील सर्वव्यापक अपने न्याय नियमों से कभी भी पीछे न हटने वाले प्राणप्रिय परमात्मा की प्रतिदिन प्रातः सायं

ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। श्रोताओ, वेद मानव मात्र के कल्याण, सत्याचरण, सद्ज्ञान, सदाचार तथा उत्तम जीवन के निर्माण का दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वैदिक संस्कृति में प्रार्थना का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख सुविधाओं की याचना करना नहीं है, अपितु अपने जीवन को सत्य, धर्म, ज्ञान, विवेक

और परमेश्वर के अनुरूप बनाना भी है। वेद मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वह अपने दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करे तथा स्वयं और समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। यजुर्वेद का यह प्रसिद्ध मंत्र इसी उच्च आदर्श को अभिव्यक्त करता है। पठित मंत्र परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह हमारे समस्त दुरितों को दूर करे और जो कुछ भद्र अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ तथा मंगलमय है उसकी ओर हमें प्रेरित करे और उसे हमारे जीवन में प्राप्त कराए। इस प्रार्थना में मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक विकास तथा समस्त मानवता के कल्याण का व्यापक संदेश निहित है। श्रोताओं, इस मंत्र में ओम परमेश्वर का पवित्र नाम है। देव परमात्मा के प्रकाशमान ज्ञानप्रद तथा कल्याणकारी स्वरूप का बोध कराता है। सवितः संबोधन है जिसका अर्थ है हे सबको उत्पन्न करने, प्रेरित करने तथा कर्मों में प्रवृत्त करने वाले परमेश्वर। विश्वानी का अर्थ है सभी अथवा समस्त। दुरिदानी का अर्थ है बुराइयां, पापपूर्ण कर्म, दोष तथा दुख के कारण बनने वाले अनुचित आचरण। परास्व का भाव है दूर कर, हमसे अलग कर अथवा हमसे दूर ले जा। यत भद्रम का अर्थ है जो कुछ कल्याणकारी, उत्तम और हितकर है। तत् नह आसुव का भाव है उस कल्याणकारी वस्तु, गुण अथवा मार्ग की ओर हमें प्रेरित कर और उसे हमारे लिए प्राप्त करा। श्रोताओं, इस प्रकार मंत्र का समग्र भाव यह है कि हे परमेश्वर, हमारे सभी दुरितों को दूर कीजिए और जो कुछ हमारे लिए तथा समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है उसे हमें प्राप्त कराइए और उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। श्रोतागण, महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक भाष्य के अनुसार इस मंत्र में परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि वह मनुष्य को दुष्ट आचरण से निवृत्त करके। यह एक महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत समझना आवश्यक है। परमेश्वर से बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को छोड़कर केवल प्रार्थना करता रहे और उसकी सभी समस्याएं बिना किसी प्रयास के समाप्त हो जाएं। वैदिक प्रार्थना मनुष्य को आत्मनिरीक्षण, विवेक, पुरुषार्थ और सदाचार की ओर प्रेरित करती है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनुचित कर्मों से बचना चाहिए और उचित कर्मों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सफलता चाहता है तो उसे केवल यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि उसकी असफलता दूर हो जाए। उसे आलस्य, समय की बर्बादी और असावधानी जैसे दुर्गुणों को त्यागना चाहिए तथा अध्ययन, अनुशासन, एकाग्रता और परिश्रम जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार मंत्र की प्रार्थना उसके व्यवहार में प्रकट होती है। श्रोताओं, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार में शांति चाहता है तो उसे क्रोध, कटु वचन, अहंकार और स्वार्थ को कम करने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि प्रेम, सहनशीलता, सद्वादिता और परस्पर सम्मान को बढ़ाना चाहिए। यही दुरितों से दूर होने और भद्र को प्राप्त करने का व्यावहारिक स्वरूप है। श्रोतागण, दुरितानी शब्द इस मंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसका अर्थ केवल बाहरी कठिनाइयों तक सीमित नहीं है। इसमें दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्व्यसन

अनुचित विचार और ऐसे आचरण भी सम्मिलित हैं जो मनुष्य के जीवन में दुख तथा अशांति उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के दुरित दिखाई देते हैं। असत्य बोलना, छल करना, दूसरों के अधिकारों का हनन करना, ईर्ष्या करना, नशे की आदत में पड़ना, समय का दुरुपयोग करना तथा अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करना, ऐसे ही उदाहरण हैं। ये प्रवृत्तियां मनुष्य की प्रतिष्ठा, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक विश्वास को क्षति पहुंचाती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्रोध के कारण अपने सहकर्मियों से अपमानजनक भाषा में बात करता है, परिणाम स्वरूप उसके संबंध बिगड़ते हैं और कार्यस्थल पर तनाव बढ़ता है। यदि वह इस मंत्र के अर्थ पर विचार करे तो उसे अपने क्रोध और कठोर वाणी की दुरित के रूप में पहचानना चाहिए। इसके बाद उसे धैर्य, विनम्रता और संवाद की कला विकसित करनी चाहिए। केवल अपनी भूल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, अपने व्यवहार में सुधार करना ही आवश्यक है। श्रोताओं, इसी प्रकार लोभ मनुष्य को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि कोई व्यापारी अधिक धन कमाने के लिए वस्तुओं में मिलावट करता है तो वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के स्वास्थ्य और विश्वास को हानि पहुंचाता है। इस मंत्र की भावना उसे लोभ का त्याग करके ईमानदारी, गुणवत्ता और न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देती है। इसलिए दुरितों को दूर करने की प्रार्थना वास्तव में आत्मशुद्धि, नैतिक सुधार और चरित्र निर्माण का आह्वान है। यह मनुष्य को दूसरों के दोष देखने से पहले अपने भीतर झांकने की शिक्षा देती है। श्रोतागण, मंत्र का दूसरा भाग है यद भद्रम तन्न आसुव। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि जो कुछ कल्याणकारी है वह हमें प्राप्त हो। भद्र का अर्थ केवल धन, पद, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख नहीं है। इसका व्यापक अर्थ उन गुणों, कर्मों, ज्ञान, साधनों और परिस्थितियों से है जो धर्म, विवेक तथा वास्तविक कल्याण के अनुकूल हो। श्रोतागण, सत्य, अहिंसा, न्याय, परोपकार, विद्या, संयम, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सदाचार मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। धन भी उपयोगी है यदि उसे न्यायपूर्वक अर्जित किया जाए और उसका सदुपयोग परिवार, समाज तथा जरूरतमंद लोगों के हित में किया जाए। इसके विपरीत यदि धन छल, भ्रष्टाचार अथवा शोषण से प्राप्त किया जाए तो उसे इस मंत्र के व्यापक नैतिक आदर्श के अनुरूप नहीं माना जा सकता। श्रोताओ, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व एक ऐसी वैदिक प्रार्थना है जिसमें आत्मशुद्धि, सदाचार, सद्बुद्धि और कल्याणकारी जीवन का सार निहित है। यह मनुष्य को अपने दुर्गुणों और अनुचित कर्मों से दूर रहने तथा सत्य, ज्ञान, न्याय, परोपकार और उत्तम आचरण को अपनाने की प्रेरणा देती है। इस मंत्र का वास्तविक तात्पर्य तभी पूर्ण होता है जब प्रार्थना हमारे जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करे। यदि हम अपनी बुराइयों को पहचाने, उन्हें सुधारने का प्रयास करें और कल्याणकारी गुणों को व्यवहार में उतारें तो यह प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हो सकती है। अतः इस मंत्र को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पढ़ना और उसके अर्थ पर विचार करना आत्मविकास का एक उपयोगी साधन है। इसका सर्वोच्च संदेश यही है कि हम अपने जीवन से दुरितों को दूर करने का प्रयास करें, भद्र को

0: अपनाएं और अपने आचरण में परिवार, समाज तथा संपूर्ण मानवता के कल्याण में योगदान दें। यही इस वैदिक प्रार्थना की आत्मा, इसका व्यवहारिक तात्पर्य और भविष्य के लिए इसका स्थायी संदेश है। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

10:38 भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देवी कवच के साथ नवरात्र का ये पावन दिन, ये पावन 9 दिन हम मना रहे हैं और बिल्कुल शारदीय नवरात्र की रात्रि, तीसरी रात्रि, तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा और आराधना की जाएगी आज के दिन। माँ चंद्र घंटा जिनका स्वरूप बहुत ही सौम्य, शांतिदायक, कल्याणकारी होने के साथ साथ पराक्रमी भी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्र सुशोभित है और इसी कारण उनका नाम चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनकी 10 भुजाएं जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण जैसे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। आज की पूजा का महत्व यह है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से भक्तों को साहस, वीरता, निर्भयता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। ज्योतिष शास्त्र में माँ चंद्र घंटा का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है और इसीलिए इनकी पूजा से मंगल दोष के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं। आज तीसरा दिन या तीसरी रात्रि हम कह सकते हैं और आज का रंग है लाल। पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना, साथ ही साथ लाल फूल माँ को चढ़ाना, जैसे कि लाल

गुलाब का फूल या फिर गुड़हल का फूल और लाल चुनरी चढ़ाकर माँ की आराधना करना यह अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही साथ आज के लिए उनका भोग ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ अति प्रिय है और इस दिन माता को दूध की खीर या फिर मखाने की खीर या सफ़ेद खोए की मिठाइयाँ भोग में चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती हैं।

नवरात्र का ये पावन पर्व सभी के लिए ऊर्जामय रहे, सभी के जीवन में दया की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, शक्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, तृप्ति की प्राप्ति हो, संतोष की प्राप्ति हो, और इन्हीं सारी शक्तियों की आवश्यकता श्रोताओं, आज की इस भक्तिमय यात्रा को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। भक्ति धारा का समापन इसी भजन के साथ करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आपने सेवा और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया। ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो, देवी माँ सभी का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार, जय माता दी।

0: सुमेरा एक बार फिर से स्टूडियो में जानते हैं उनसे संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। एलर्जी टू माँ की मेडिकल रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के सुपुर्द की जा चुकी है। एलर्जी की जबड़ों से गोली को निकाला जा सका है जो उनके मुख्य ब्लड वेसल्स और अहम नर्व्स के बहुत ही पास थी। वो कड़ी निगरानी के तहत हैं क्योंकि अभी तक वो खतरे से बाहर नहीं है। देश भर में अभी माहौल बिल्कुल शांत है। सभी सड़कें गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुली हैं। शांति और सुरक्षा का आश्वासन रखने के लिए मुख्तलिफ रणनीति

इलाकों में पुलिस की विभिन्न इकाइयों के अफसरों को तैनात किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम सुचारू तरीके से चल रहा है, सभी सरकारी विभाग कार्यरत हैं। जहां तक निजी क्षेत्र की बात है, बिजनेस मर्चेंट्स ने हिफाजती कदम के तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का उपाय दिया है। बॉम्बू में पुलिस के वाहनों पर वार किया गया है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई है। बौकली का

0: सामान्य रूप से कार्यरत हैं। विदेश में 30 से ज्यादा साल बाद कनाडा का एक बड़ा व्यापारिक डेलीगेशन भारत गया हुआ है। 300 से ज्यादा उद्योगपति साझेदारी की नई संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सेपा पर भी दस्तखत किए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, राधा।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. On the hour, every hour, Radio Marches.
2: आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है मेबर्ग के आसपास के इलाके, जिनमें हैं कुछ इलाके रू लाशो, रू सुफ्लेया, रू दे क्रेयोल और रू बुकों के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 14 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:02 आगे का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। उर्दू भाषा में पेशकश है सैयदा सुबाई की।
3: शम्मे फरोज़ा।

अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वसत सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वसत सहरा दे दे, कि तेरे बस में है ख़तरे को भी दरिया करना, कि तेरे बस में है ख़तरे को भी दरिया करना। मौज़ू सामईन, आज के इस उर्दू मजलिस में हमेशा की तरह आप समात फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द, नातु सलाम, इसके अलावा आपके पैगाम। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताकुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है, और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया, और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डुबो दिया।

और इनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो, वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है।

इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, तो वो मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है सो वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा।

ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकुकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है, और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजो, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास बेरोग दिल लेकर आया वो बच जाएगा।

और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहां हैं, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल जहन्नम होंगे।

वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त, तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं।

वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें जबकि तुम्हारे पैरों तो रजील तरीन लोग हुए हैं। नूह ने कहा मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो। और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो फकत साफ साफ खबरदार करने वाला हूं।

उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया।

भला तुम हर ऊंची जगह पर फजूल निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जाबिराना पकड़ते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और उससे डरो जिसने तुमको उन चीजों से मदद दी जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हें मवेशियों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है।

0: वो कहने लगे कि तुम हमें खा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए यकसा है, ये तो अगलों ही की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुटलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला, बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।
1: صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے تلاوت قرآن پاک۔ اے پاک پروردگار، ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، آمین۔

मौजूद सामेन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:26 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, अक्टूबर की 13 तारीख है और जी हाँ, माह है।

0: जमादुल अव्वल की आज पहली तारीख है। अब आप समात फरमाएंगे खतीबो इमाम मस्जिद रज़ा, माफ़ कीजिएगा, खतीबो इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: الحمد لله الذي أفلاك والعرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس وقت हमारी तकरीर का सिलसिला कब्र वालों से फैज़ मिलता है और अल्लाह ने उन्हें क्या अख्तियारात और तसरुफात दे रखे हैं, बात इसी के हवाले से हो रही है। सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह ने जो अख्तियारात दिए हैं, जो तसरुफात दिए हैं, वो कोई छीन नहीं सकता। और मोहब्बत रखोगे तो अब तुम और या हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ज़रूर बन सकते हैं। हसद व कीना रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मोहब्बत रखोगे तो उनका फैज़ हयात ज़ाहरी में भी था और आज भी है, और अहले ईमान को इंशाअल्लाह उनका फैज़, उनकी मदद यहाँ भी कब्र में, हश्र में, हर जगह अल्लाह ताला फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये अकीदा अपना है। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला को देखने की बात आई तो शेख अबुल सऊद अहमद इब्न अबी बकर हरीमी अत्तार ने बगदाद में 580 में कहा कि मैंने सुना, 580 हिजरी में कहा कि मैंने सुना कि अपने शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला कहते थे, खुश नसीब हो जाए वो शख्स जिसने मुझे देखा और वो भी खुश नसीब हो जाए जिसने मेरे देखने वाले को देखा या मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा। मैं उस शख्स पर हसरत करता हूँ जिसने मुझे नहीं देखा। जिसने सरकार गौसे पाक को देखा वो बड़ा खुश नसीब, उनके देखने वाले को। तो ये सिलसिला आज भी चला आ रहा है और ये खुश नसीबी की बड़ी बात है। अज़ान मोहतरम 563 हिजरी में हज़रत अबुल हसन इब्न हैती ने कहा कि मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हज़रत शेख मारूफ़ करखी रदी अल्लाह तआला की कब्र की ज़्यारत की, बस कहा अस्सलामु अलैका या शेख मारूफ, तुम हमसे दो दर्जा ऊपर गुज़रे हुए हो। फिर दोबारा उनकी ज़्यारत की और कहा अस्सलामु अलैका शेख मारूफ, हम तुमसे दो दर्जा आगे बढ़ गए। हत शेख मारूफ़ करखी रदिल्लाह ताला ने कब्र से जवाब दिया, वअलैकस्सलाम ए अपने ज़माने के सरदार। अज़ान मोहतरम, इन बुज़ुर्गों को अल्लाह ने कितनी ताकत व कुव्वत अता की है।

कि वो सवाल सुनते हैं और जवाब भी अता करते हैं। अज़ान महतरम, मोमिन की रूह नहीं मरती है। तो हज़रत गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला को आज भी अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत के वक्त आवाज़ दो तो बेशक अहले ईमान को ये आवाज़ देना जायज़ है और सरकार गौसे पाक अल्लाह की दी हुई ताकत से उनकी मदद फरमाते हैं और उनकी हाजत को पूरी कर देते हैं। अबुल हसन करशी ने दमिश्क में कहा कि मैंने शेख अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर रदिल्लाह तआला ने सुना, फरमाते थे जब तुम खुदा से कोई हाजत तलब करो तो मेरे तवस्सुल से मांगो। अज़ान महतरम, तो ये वो औलियाए कामलीन हैं और खुद गौसे पाक ने कहा मेरे तवस्सुल, मेरे वसीले से मांगो। तो आज हमें मांगना क्या है, इस पर हमें गौर करना है। हमें नहीं कहने आए हैं कि आप दुनिया ना मांगो। हम रोज़ाना नमाज के बाद दुआए थानी में और कुछ लोग दुआए उला में ये कहते हैं और पढ़ते हैं कुरान की आयत, अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया बेहतर दे, ऐ अल्लाह हमें आखिरत भी बेहतर दे, वक़िना अज़ाबन्नार जहन्नम की आग से बचाना। तो रब से भी यही सवाल करो और रब के महबूबीन से भी यही सवाल करो, क्या गौसे आज़म हमारी मदद कीजिए कि दुनिया बेहतर हो और आखिरत के लिए भी हमारी मदद कीजिए कि आखिरत बेहतर हो। दुनिया के पहलू पर सैयदना गौसे पाक, जैसा कि सभी जानते हैं, वो मादरज़ाद वली थे, हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम बिलखसूस नबी अकरम सल्लम की सुन्नत पर दरसगाह, मकतब, मदरसा गए पढ़ने के लिए। और पहले ज़माने में मदरसों में कुरान हकीम के साथ साथ अहादीस के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाती थी। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जहाँ पर इल्मे कुरान, इल्मे हदीस, इल्मे फ़िक़ह, वहीं पर इल्मे दुनिया में भी आप अपना मकाम रखते थे, चाहे वो मैथमेटिक हो, हिसाब व किताब हो, चाहे साइंस हो, चाहे जुग्राफिया हो, जो भी हो उससे आप फैज़याब रहे। और इल्मे दीन भी। तो हम ये नहीं कहते कि गौसे पाक से आप दुनिया ना मांगो, मांगो, लेकिन दुनिया का वो सवाल करो जो हसना, बेहतर दुनिया हो। और बेहतर दुनिया में इंसान मगरूर नहीं होता, घमंडी नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, बल्कि हमा वक्त अल्लाह के रहमत कामिला, उसके रसूल के रहमत हक्का के साए में सर झुकाए हुए महज़्ज़ब व मुअद्दब और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। व फिल आखिरा हसना, आखिरत का भी सवाल। तो आज जो इल्मे दुनिया हासिल करने की बात है, अल्लाह अकबर, ज़माने रसूल दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इल्मे दुनिया हासिल करने का हुक्म था और सरकार ने इल्मे दुनिया पर आपके अक़वाले मुबारका हैं, उतलबुल इल्मा वलव काना बिस्सीन, अगर

तुम्हें चाइना जाकर इल्म हासिल करना पड़े, तो चाइना में कोई मुहद्दिसीन नहीं थे कि हदीस के इल्म की तरफ इशारा था, कोई मुफस्सरीन वहां पर नहीं थे। इल्म दुनिया वफिल आखिरा हसना, इल्म आखिरत पर भी। अल्लाह ने हमें दो आंखें दी हैं तो दुनिया भी देखो और आखिरत भी देखो। अदब की बात आई तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला किस कदर अपने वालदे मुअज़्ज़मा की ताज़ीम फरमाते रहे। वाक़िया सभी को मालूम है कि वालदा ने कहा, बेटा झूठ ना बोलना, तो अपनी वालदा की बात को माना और उस पर अमल किया। तो वालदा की बात को मानकर डाकुओं के सामने सच का मुजाहरा पेश किया, सच बोले, तो नतीजा ये निकला कि जितने झूठे थे डाकुओं की जमात, वो सब तौबा करके सच्चे के साथ हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो। तो सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला कि ये सीरत तैयबा भी हमारे सामने होनी चाहिए। पैदा होते ही माह रमज़ान का रोज़ा आप पर फ़र्ज नहीं था, लेकिन अपनी वलायत को ज़ाहिर कर दिया। आप कुरान हकीम की तिलावत ये फ़ी ज़माना हमारे उन माँ बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक वाक़े गौसे आज़म है कि जो माँ बहन बेटियाँ हमल से हैं, प्रेग्नेंट से हैं, अगर वो कुरान हकीम की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, तो इंशाअल्लाह ताला आज भी वलायत का दरवाज़ा नहीं बंद है। हाँ ये और बात है, कोई अब दूसरा शायद अब्दुल क़ादिर ना पैदा हो, लेकिन यकीनी मैं कहता हूँ कि ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर ज़रूर पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। आज भी माँ के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा, जब माँ ने क़ुरान पढ़ा तो उनके जिस्म और उनके कल्ब के अंदर इसका असर मिला। जैसा कि यूरोप में देखा जाता है, जो ख़वातीन हमल से होती हैं, गवर्नमेंट का कानून है कि वो सिगरेट और शराब नहीं पी सकती। वजह क्या है? जब बात पूछी गई तो जवाब यह आया कि बच्चे फिर अपाहिज और लंगड़े और लूले पैदा होते हैं, ये साइंस है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की वालदा ने इल्म दुनिया की भी अहमियत बता दी और इल्म आखरत की भी। किस दुनिया में हर बच्चा पैदा होने वाला, अगर उसकी वालदा मुअज़्ज़मा, उसकी माँ मोहतरमा अगर कुरान हकीम की तिलावत करें, नमाज की पाबंद हो जाएं, दरू शरीफ पढ़ें, अस्तग़फ़ार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला जो नौमौलूद बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, माँ के इस नेक अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो भी दीनदार होगा, उसकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखरत भी बेहतर होगी। अज़ान मोहतरम, तो सैयदना गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला ये वो हैं जो 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की, पूरी रात अल्लाह की तमहीद, अल्लाह की तस्बीह, हम्द व ज़िक्र में वक्त गुजारा। आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के नाम की महफिल करते हैं, जो भी खाना हम खा लेते हैं, लेकिन उनकी सीरत पर अमल नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। वाकई गौसे पाक से अगर मोहब्बत है, उनकी मदद चाहते हो, तो जैसा उन्होंने किया है उनकी ज़िंदगी पर अमल करो, उनको फॉलो करो, उनके तबा कर लो। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं,

0: बेनमाजी को मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। किस कदर नमाज पर आपने अहमियत बताई और अहमियत दिखाई, और ख़ुद नमाज नफिल किस कदर पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। तो जो गौसे आज़म से मोहब्बत रखते हैं तो सिर्फ़ उनकी बिरयानी से, उनके खाने से, उनके हलीम से ना मोहब्बत रखो, उनके अक़वाल से मोहब्बत रखो। गौसे पाक कभी झूठ नहीं बोले। अगर हम सच्चे गौसे पाक के चाहने वाले हैं तो हमें कतई झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं तो बेशक हमें अपनी वालदा की हर बात माननी चाहिए। हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं तो कुरान हकीम के आते मुबारक फ़ला तकुल लहुमा उफ़िम वला तनहर हुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा पर अमल करना चाहिए। माँ बाप को उफ़ कहना भी हराम है, माँ बाप को झिड़कना भी हराम है। वाकई हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं तो आज से हम अपने माँ बहन बेटियों को भी कहेंगे और वालदेन को भी कहेंगे कि अगर बच्चा गलती करे और तेज़ आवाज़ में माँ से बोले तो बाप का फ़र्ज़ है उसे समझाए। क़ुरान ने माँ के सामने बुलंद आवाज़ से बात करने के लिए मना किया है। बाप से अगर बदतमीज़ी से बात की तो माँ का फ़र्ज़ है फ़ौरन बच्चे को समझाए, बेटा ये क़ुरान के ख़िलाफ़ है। वला तनहर हुमा, माँ बाप से आप झगड़ा मत करें। आज हमारे घरों का हाल क्या है? तो ऐसे में हमारे सामने सीरत गौसुल आज़म मौजूद है कि उन्होंने क़ुरान पर अमल करके, माँ ने कहा झूठ ना बोलना तो नहीं बोले, और ना बोल झूठ ना बोलने का नतीजा ये निकला कि जो डाकुओं की झूठी जमात थी सब ने सच बोलने का अहद कर लिया और गौसे पाक के हाथ पर तौबा कर लिया। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की सीरत पर सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की तज़ीम की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक से मोहब्बत करोगे तो बेशक ये सब मिलेगा, तो दुनिया भी बेहतर होगी, आखरत भी बेहतर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इंदीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन मुझसे दूर बैठने वाले वो लोग हैं जो बातूनी, बिला एहतियात बोलने वाले, ज़ुबान दराज और तकब्बुर करने वाले हैं। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ।

संत रुकी मान।

如果您中途加入，这里是毛里求斯广播电台819频道。

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

घड़ी मिला लीजिए, समय 2:30 बज चुके हैं और मैं हूँ रत्ना, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें और अभी से लेकर बिल्कुल 4 बजे तक हम आए हैं आपका साथ है देने के लिए। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बिल्कुल जैसा माहौल है ऐसे माहौल में अपनी सुरक्षा को कायम रखते हुए अपने घरों में रहें। और बिल्कुल रेडियो मॉरिशस पर हम आपको समय समय पर सारी अपडेट्स देते रहेंगे, तो बस हमारा साथ दीजिएगा। इस समय बिल्कुल 2:31 हो चुके हैं और बिल्कुल हमारा देश पैराडाइज आइलैंड माना गया है, धरती का स्वर्ग, और इस स्वर्ग की सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। यहाँ के भाईचारे को लोग मिसाल मानते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और बस एकता भाईचारा सभी में बना रहे।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बिल्कुल रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए। बिल्कुल रोशनी आने वाली थी पर कई जगहों पर समस्या स्थितियां बहुत बुरी हैं और बस इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने घरों में हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल इस वक्त 2:36 हो चुके हैं और यहाँ पर शकुंतला जी मोताइलोंग से आप हमारा साथ दे रही हैं। आपके प्यारे से मैसेज को हम ज़रूर शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। गायत्री जी, आपकी प्यारी भाभी जो है नवल फॉन्स से, आपके प्यारे भतीजे हैं अजय और आपने गाना मांगा है ये प्यारा सा भजन नवरात्रि के उपलक्ष्य में।

0: आपकी पसंद।
1: इस समय मॉरिशस का जो माहौल है बहुत ही तनाव से भरा हुआ है, और ऐसे तनाव भरे माहौल में भी हम आपके साथ बने हुए हैं। तो बस आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें और गीतों के माध्यम से बिल्कुल हमारा साथ आप भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमें जानकर बेहद अच्छा लग रहा है। 4028085 पर आपके फ़ोन कॉल्स आते रहे हैं, मैसेजेस की बौछार होती रही है ऑन 5251705 पर। तो चलिए इस अगले गीत को लेते हैं। राधा जी, आप हमारा साथ दे रही हैं इस वक्त सैपिया से, और है अनीता, रोशनी, शांता, राजवंती और आपके सभी परिवारजन। फिल्म है अनुराग, लता जी की प्यारी सी आवाज। इस गीत को आपने मांगा है।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं शीला जी। और बिल्कुल सपेरा फिल्म का ये गाना आपने मांगा है, तो हम आपका भी दिल खुश करेंगे इस गीत के साथ। 1961 के दौर का ये गीत है। आवाजें हैं मना डे की।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम और बिल्कुल 2:55 और ऐसे ही मज़ेदार गीतों से सजाया हुआ ये सफ़र हम आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ पर बिल्कुल प्यार से हमारा साथ दे रही हैं रेहाना जी नॉर्थडाम से और उनकी प्यारी सखियाँ माला फाउदर और सुरेखा जी के नाम फिल्म अमरदीप का ये गाना मांगती हैं जो है 1958 के दौर का गीत और मोहम्मद रफ़ी और आशा ताई की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना और ये गाना ही लगभग हमें लेकर चलेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों की। वैसे आपको ये भी बताते चलिए आप के परिवार तुरावाली परिवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनका नाम भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सपहर के ठीक 3 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: को भी नमस्कार। देश में कानून और व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दिन के 2:30 बजे से मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक लग रही है। इसके अंतर्गत देश में शांति बहाली के लिए सभी संबद्ध पक्षों की जिम्मेदारी को लेकर कोऑर्डिनेशन पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक बार फिर एकता और स्थिरता बनाए रखने की मांग की है। कॉलिविय घटना के बारे में डीपीपी दफ्तर ने कल जारी कम्युनिके में सूचित किया कि पुलिस को रोजिल जिला अदालत में एक नई प्रोविजनल चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें वैन चालक तिरवासेन सुबायन को डराने धमकाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करने और एलोजी तोमा को अनजाने में शारीरिक चोट पहुँचाने का नया आरोप शामिल है। कम्युनिके के अनुसार इन नए आरोपों के लिए अलग अलग सजाएं हो सकती हैं, जिनमें 15 साल तक कैद की सजा शामिल है। डीपीपी दफ्तर ने यह भी कहा कि घटना के समय मौजूद अन्य पुलिस अफसरों और एसएमएफ के सदस्यों की जांच की सिफारिश की है। इस कदम का मकसद ये पता लगाना है कि क्या वे किसी खतरे में फंसे लोग व्यक्ति की मदद न करने के लिए दोषी हैं। चूंकि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए डीपीपी का कहना है कि सबूतों की जांच जारी रखी जाएगी ताकि तय किया जा सके कि और प्रोविजनल आरोप लगाए जाने चाहिए या नहीं। अगर जांच में कोई प्रगति नहीं होती है तो डीपीपी दफ्तर रोजिल जिला अदालत में न्यायिक जाँच की मांग करने पर विचार करेगा। और एलोजी तोमा की स्थिति को लेकर कुछ अच्छी खबर। प्रेस को संबोधित करते हुए आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह अच्छी खबर सुनाई कि एलोजी का ऑपरेशन कल सफल रहा है और उसकी हालत में सुधार हुआ है। 7 घंटों की जटिल सर्जरी के अंतर्गत उसके स्पाइन से गोली निकाली जा सकी और कुछ घंटे में उसे होश भी आया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उसके हाथ और पैर सभी सलामत हैं और उसने अपनी आंखें भी खोली हैं। इस प्रेस सम्मेलन में मौजूद डॉक्टर उमेश शामलोल ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय टीम ने एक पूरा ऑपरेशन थिएटर 7 लाया है। इस टीम में ENT स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेसिस्ट और नर्स आदि शामिल हैं। विदेश की खबर नियर्मा के साथ।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बनी स्वीकृति के कुछ घंटे बाद ही

0: रूसी ताकतों ने यूक्रेन के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले किए। इसके चलते पश्चिमी यूक्रेन के कई इलाके बिजली आपूर्ति से वंचित रहे।
1: ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: में इस वक्त बिल्कुल 3:04 हो रहे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति। ये विज्ञप्ति है मेबर्ग के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें हैं कुछ इलाके रू लाशो, रू सुफ्लेयर, रू दे क्रेयोल और रू बुकों के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 14 अक्टूबर को यानी कि कल सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
0: आपकी पसंद, आपकी पसंद कार्यक्रम, आपका दैनिक कार्यक्रम और आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जहां पर हम आपके पसंदीदा गीतों की मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। मैं हूं रत्ना, आपका साथ दे रही हूं जी हां 4 तक। और जहां पर भी हैं सुरक्षित रहें। सुरक्षित कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और इसी के साथ बस ईश्वर सभी के दिलों में एकता की भावना को बनाए रखें और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बिल्कुल इस संयम और कानून के अनुशासन को जारी रखते हुए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। और चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लीला जी बॉशेगी से, और इस अगले गीत की फरमाइश आप करती हैं। फिल्म देश प्रेमी से लिया हुआ ये गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये केवल गाना नहीं है, ये एक संदेश है जो मॉरिशस के हर वासी को पहुंचाया जा रहा है।

जमाना पहले का था या जमाना आज का है, परिस्थितियां बदली हैं, पर दिल की कड़वाहट को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल की नफ़रत, दिल की कड़वाहट ज़िंदगी को जला कर राख कर देती है, रिश्तों को जला कर राख कर देती है। और बस यही संदेश हम देना चाहते हैं इन गीतों के माध्यम से और आपकी पसंद कार्यक्रम के माध्यम से। आपके चुने हुए गीत हम चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वानी दुमन हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्यारी बहनें इंदिरा, शारदा, नीला और प्रतिभा हैं, सो शोभा और गीता गजादर। और फिल्म कब्जा का ये गाना आपने मांगा है, और बिल्कुल ये गाना भी दिल से दुआ देने की ही बात करता है। तो चलिए इस गीत को हम आपके नाम जरूर चलाना चाहेंगे।

0: की पसंद।
1: नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के समय में बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मॉरिशस में सभी की दुआओं की, सभी के प्रार्थनाओं की, सभी के प्रेयर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो इन दिमागों में परिवर्तन ला सके। और चलिए इसी के साथ 3:16 हो चुके हैं और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के साथ हमारे बहुत सारे प्यारे श्रोता जुड़ चुके हैं। प्यारे प्यारे श्रोताओं के गीतों को हम चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ विद्या जी हमारे साथ यूनियन पार्क से जुड़ चुकी हैं, बहनें हैं सती, सुरेखा, अमृता, बबीता, सुनीता और चाची कुमारी। साथ ही साथ यहाँ वाकवा से जुड़ी हुई हैं सुदेवी जी, उनकी प्यारी बहन ललिता कुशल जो है त्रिओले से, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालेगा से है याश, नीरज, सभी, राम रतन, कुवारू, रिदोई, रघुबा और जालू परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। साथ ही साथ यहां पर पेचिकत से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, माफ कीजिएगा, पेचिकाफ़े से, जी हाँ पेचिकाफ़े से जुड़ चुकी है माला जगी और यहां पर वे भी हमारा साथ दे रही हैं। और इस अगले गीत की फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आपने एक आरती मांगी है, जी हाँ नव दुर्गा की आरती हम ज़रूर चलाना चाहेंगे। ये गाना आपके लिए सुनीता जी हमारा साथ दे रही हैं गाँव गुप से, साथ है विमला, अमृता और वीना जी, इनकी 3 प्यारी बहनें, तो ज़रूर हम आपका दिल खुश करेंगे। और बिल्कुल यहाँ मून हमारे साथ हैं इक्वायो से और उनके पति हैं चांद और उनके 3 प्यारे बच्चे अविनाश, अभिषेक और अविशा, साथ ही साथ उनकी 2 प्यारी बहुएं नीलम और जिंसरे और उनके दामाद है आश्ले, निया और निक्षु साथ है। माँ का दिल है थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि ऐसे समय में बिल्कुल हर माँ को चिंता होती है अपने बच्चों की कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। तो चलिए देवी माँ की कृपा से सभी का घर मुश्किलों से दूर रहे, इस गीत के माध्यम से बस देवी माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं।

0: भक्तिमय वातावरण है, और इस भक्तिमय वातावरण में जब भी कभी किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की है तो कहते हैं ना, शिव और शक्ति ने उस विनाशकारी शक्ति का नाश किया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गायत्री जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, सैंपी ऐसे प्यारी बहन अमृता, साथ है भाभी मीरा, साथ है नेहा, क्षिति, दिव्या, गिरिशा, मेधा, सुधीर, कमलेश और सुधा। बहुत ही प्यार से आपका नाम जोड़ते हैं और बड़े दिल वाला, माफ़ कीजिएगा, ये जो अगला गाना है आपने मांगा है, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम हम करना चाहेंगे आशा ताई की आवाज़ में। जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी ज़्यादा हसीन है ज़िंदगी, पर ये कीमती अल्फाज हमें तब समझ में आते हैं जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
1: अंदाजा

0: छोटे।
1: जिंदगी के दिन बहुत ही छोटे हैं भाई। हम इसमें कहते हैं ना कि दो पल की जिंदगी
0: कल की हमें,
1: पर कितने झमेलों को पाल लेते हैं और इसी झमेलों के कारण हम अपने ही जीवन का सुख चैन खो देते हैं। चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफर जारी रखते हैं और फिल्म है रात और दिन। मुकेश साहब की प्यारी सी आवाज और इस प्यारे से गीत को सिलेक्ट किया है अमीना जी ने, जो पोंफाल से हमारा साथ दे रही हैं। उनकी प्यारी बहनें हैं फाइमा, नाजमा, फाजिमा, मुनीजा, दो भाई हैं, साथ ही सभी भतीजों के नाम और भगिनियों के नाम, साथ ही साथ दो भाभियों के लिए रात और दिन दिया जले, सामने फिर भी अंधियारा।

सरस्वती चंद्र, मुकेश और लता जी की आवाज एक बार फिर, और इसी के साथ ये गाने की पसंद की है दिलीप जी ने, जो कोंगो माँ से साथ दे रहे हैं। ये गाना जाएगा संगीता, योगेश, कविता, कृष्णवी, मनीषा और सभी सुनने वालों के नाम।

भाई, पहले के जमाने में एक छोटा सा फूल ही अगर कोई भेज देता तो दिल कितना खुश हो जाता, और आज के जमाने में बड़े बड़े गिफ्ट देकर भी कई बार हम लोगों को खुश नहीं कर पाते। चलिए यहाँ पर प्यारी सी दुआएं, प्यारा सा आशीर्वाद भेजती हैं मनीता जी फ्रांस से, उनकी प्यारी कजन श्वेता के नाम, जिनका आज जन्मदिन है। उनको बहुत सारी बधाइयां इस गीत के रूप में। और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास रहे। और जब भी हमारा जन्मदिन आता है, ईश्वर से बस हम यही प्रार्थना करें कि उन्होंने एक और साल बढ़ा दिया।

और इसी के साथ आज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बिल्कुल एक प्यारी सी मम्मी ने मांगा है ये गाना अपनी प्यारी बेटी के लिए जो इस वक्त घर पर से काम कर रही हैं। स्वस्ति जी हमारे साथ है काटरबोन से, उनकी प्यारी बेटी है लेखानी और बेटा है सुमित। चलिए इस लेखानी सुमित आप स्टे सेफ करें और बिल्कुल घर पर रहें, गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाएं मम्मी के साथ, इससे बेहतर कोई समय हो नहीं सकता। और अपनों का साथ सबसे अहम, सबसे प्रेशियस।

हमें माँ से ज्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल, हम पिता को नहीं भूल सकते, पिताजी का भी प्यार, उनकी डांट, उनकी कहते ना गुस्से भरी आंखों में कई बार उनका प्यार भी छुपा ही रहता है। और यहाँ पर चलिए आशा जानू, हम आपको नहीं भूले हैं, कॉटेज से आप हमारा साथ दे रही हैं और प्यारी ममा कुमारी, साथ है आरती, आपके जीजा है राज, शुभम और ऋषभ, और आपने गाना मांगा है चित्रा जी, और साथ है भाई विजय, साथ ही साथ आपकी सखिया नंदिनी, जनीता, धीरज और सभी सुनने वालों के नाम। फिल्म है ममता की छाओ और यही गाना हम सुनीता जी के नाम भी करना चाहेंगे जो इस वक्त प्रोविडेंस से हमारा साथ दे रही हैं। सभी कोइरू परिवार और त्रिलोकीनाथ मंदिर के सभी सदस्यों के लिए, सभी सुनने वालों के नाम, और एक बार फिर आप सभी को जय माता दी। चलिए इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं पूरा हो जाएगा क्योंकि ये गाना काफ़ी लंबा गाना है, तो आप इस गीत को एंजॉय कीजिए और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है, देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो। और इसी के साथ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरी तरह से निभाएं, और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, हमारे बाद आ रहे हैं बिल्कुल तामिल कार्यक्रम, आप एंजॉय कर सकते हैं तामिल गीतों को। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या, जय माता दी।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जहाँ दोस्तों कुछ गीत सिर्फ सुनने नहीं जाते बल्कि दिल में बस जाते हैं, कुछ धुने हमें बचपन की गलियों में ले जाते हैं और कुछ पुराने दोस्तों की याद दिलाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम में और सदाबहार गीतों के साथ।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे खास बात यह है कि इनके साथ हमारी ज़िंदगी के कई खूबसूरत पल जुड़े होते हैं। कभी किसी की याद, कभी पहली मुलाकात, तो कभी दोस्तों के साथ बिताया हुआ वो बेपरवाह समय। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, आशा जी की।

दोस्तों, मोहब्बत के एहसास को लफ्ज़ों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे पुराने गीत इस काम को कितनी खूबसूरत से कर जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी जो सीधा दिल तक पहुंच जाती थी। जी हाँ, उनके गीतों में मोहब्बत की सादगी और जज्बातों की गहराई महसूस होती थी। तो चलिए, अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं फिल्म आन से लिया गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पुराना गीत चंद ही पलों में हमें कितनी दूर ले जाता है। हम अपने बीते हुए कल को याद करने लगते हैं, पुराने चेहरे आँखों के सामने आ जाते हैं और दिल कहता है कि काश वो पल फिर से लौट आए।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशियाँ मिलती हैं, कभी मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन एक मुस्कुराहट और एक अच्छा गीत हमारे दिन को बेहतर बना सकता है।

तो प्यारे श्रोताओं, अब वक्त आ गया है आज के इस खूबसूरत संगीत सफ़र को अलविदा कहने का। उम्मीद है कि भूले बिसरे गीत के नगमों ने आपको पुरानी यादों से मिलाया होगा। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एलोजीटोमा के इलाज में एक अहम कदम। जीतू अस्पताल में भारतीय और मर्शन डॉक्टरों की टीम ने 7 घंटे लंबा जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया, उसकी स्थिति में सुधार। कल रात मॉरिशस के कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस स्टेशनों पर हमले, सड़कों पर रुकावटें और सैंतवा में JPM की तैनाती, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। हिंसा का असर आज आम जिंदगी पर भी दिखाई दिया। 33,000 से ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं स्थगित हुई, कई इलाकों में दुकानें बंद रही और बस सेवाएं प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, सऊदी अरब में मिसाइल हमलों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा, राजधानी रियाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद होने की खबर। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर 2:30 बजे से कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और शांति बहाल करने के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाना था। प्रधानमंत्री ने जनता की सुरक्षा, एकता और देश में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक और बयान जारी किया जाएगा। और देश के कई इलाकों में हुई हिंसक घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। इस सिलसिले में आज मंत्रिमंडल की आपात बैठक लगी। कॉलव्यू में रविवार रात गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई 27 वर्षीय एलोजीटोमा का जीतू अस्पताल में 7 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। भारतीय और मर्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने मिलकर ये जटिल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन सफल रहा है और शुरुआती संकेत काफ़ी उत्साहजनक हैं। हालांकि एलोजीटोमा की हालत पर अभी भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अनाबेल वुलबेया, गीता स्नोडन।
1: 7 घंटे तक ऑपरेशन चला एक जटिल सर्जरी, जिसमें मॉरिशस और भारत के 13 विशेषज्ञों की टीम ने भाग लिया। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल हुई एलोजीटोमा का जीतू अस्पताल में इलाज किया गया। भारत से विशेष रूप से आए 6 विशेषज्ञ अपने साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी लाए थे। उन्होंने 7 मॉरिशन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। डॉक्टर श्यामलोल कहते हैं, जीतू अस्पताल में एक खास उपकरण है, एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसी के जरिए सटीकता से देखा गया कि गोली कहाँ है। अंत में इसी उपकरण की मदद से उसे पकड़ कर बाहर निकाला गया। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खंडेलवाल कहते हैं, आज दवाइयां बंद की गई, मरीज के सभी परीक्षण उत्साहजनक हैं, वो होश में हैं और बहुत जल्द वेंटिलेटर भी हटा दिया जाएगा।
2: एंड वेरी सून आवर प्लान इज टू रिमूव द वेंटिलेटर एंड मेक हर मोबिलाइज।
1: ये सर्जरी मॉरिशस और भारत की चिकित्सा टीमों के बीच सहयोग का एक उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। ये ऑपरेशन 100% सफल रहा। सभी डॉक्टरों और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें भाग लिया धन्यवाद देते हैं। एलोजीटोमा के परिवार के लिए ये खबर उम्मीद लेकर आई है। पिछले कई दिनों से वे चिंता और बेचैनी के दौर से गुजर रहे थे। उसमें सुधार आया है, उसने हमें देखा और हमें पहचाना भी, अपनी माँ का हाथ भी पकड़ा। हमारे लिए ये राहत की बात है। जोनाथन तोमा कहते हैं, अब मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से देख सकूंगा। हमने उसे ठीक करने

करने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एलोजी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी सेहत में सुधार का आकलन करने और आगे के इलाज की दिशा तय करने के लिए अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण होंगे।

0: के लिए शहीद पीएम को तैनात किया गया। अबेकोबी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेल्विना शाजा संगीली, आशिता रघु, सचिन जगलोल और संतोष सिगुलाम की रिपोर्ट। विवरण गीता स्नारायण।
1: सखों के प्रवेश में अबेकोबी में कल जैसे ही रात होने लगी, पहले फसाद की घटना की सूचना मिली। मुख्य सड़क पर पहिए और अन्य वस्तुएं जलाई गईं। चालकों से उन जगहों के आसपास न जाने का निर्देश दिया गया। सैखवा अन्य इलाकों से कट गया। दक्षिण से प्रवेश करने वाली निकोले गली और उत्तर के प्रवेश में अबेकोबी राउंड अबाउट तक आवाजाही बंद रही। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ताकत के नॉर्थ डिवीजन ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। बहुत जल्द पुलिस कर्मियों को ही प्रदर्शन का निशाना बनाया गया। उनकी ओर वस्तुएं फेंकी गईं, जबकि कुछ लोग पुलिस स्टेशन पर हमला करने लगे। अन्य गलियों में स्थिति शांत नजर आ रही थी। मुख्य सड़कों पर दंगे फसाद किए जा रहे थे।
2: Et peu importe, même j'étais à côté, bois marchand, whatever, côté d'été, il y a des gens malades dans l'endroit là. Il y a des gens qui ne pas bien. Il y a des gens qui sont malades de l'équerre. Il y a des gens qui sont diabétiques. Qui veut dire pour l'action que je peux faire là, je peux avoir les autres problèmes avec les autres gens qui ne sont pas mérités. Faire des gens comprendre que le combat n'est pas comme ça. Mais ça, ce n'est pas la solution, mais différent. Le prétexte est servi maladie.
1: पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। पुलिस की अन्य इकाइयां भी भेजी गईं।
3: सिचुएशन सू कंट्रोल पर मोमेंट नून रेसे कोंग्रेस बन बन की पे मैनिफेस्टेट जरूर ताले सुन दिगा ले लियो ला पुलिस ने नून ने तू सू कंट्रोल ए नू पे रासुर ला कम्युनिटी इसी की Tout affaire déroule dans l'autre. Mais seulement, mon plaisir, c'est qui vous fait une affaire extravagante, vous subirez les conséquences.
1: आज सुबह स्थिति का जायजा लिया गया। दुकानों में तोड़फोर और लूटपाट की गई। सार्वजनिक परिवहन बाधित हुआ। स्कूलों पर इसका ज्यादा असर पड़ा। आज के लिए निर्धारित साल के अंत की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई।
0: कल रात की हिंसा के बाद आज सुबह भी लागोलेत और बॉम्बू समेत कुछ इलाकों में हिंसक घटनाएं सामने आईं। तोड़फोड़ और नुकसान के बीच लोगों में चिंता बनी हुई है। आखिर इन घटनाओं के पीछे क्या वजह है? सैंतखवा समेत कई इलाकों में हमारी टीम ने लोगों से कई सवाल पूछे। अलग अलग प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियाओं के बीच एक अपील सामने आई, शांति लौटे और हालात सामान्य हो। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुई हिंसा में कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कहीं पत्थर फेंके गए तो कहीं पेट्रोल बम से हमले हुए। कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दोबारा हिंसा की आशंका को देखते हुए सावधानी के कदम उठाए गए हैं। आज सुबह तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। दोनों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें रिहा किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। आज मंगलवार 13 अक्टूबर को के लिए निर्धारित माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं स्थगित होने से 33,893 छात्र सीधे प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात कई इलाकों में हुई घटनाओं के बाद छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट अब कैम्ब्रिज और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर परीक्षाओं का नया टाइम टेबल तैयार कर रहा है। परीक्षाएं दोबारा से करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी अभी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी एक कम्युनिके में सूचित किया गया है कि कल भी देश के स्कूल आम तौर के बजाय बंद रहेंगे, लेकिन एससी और एचएससी की निर्धारित परीक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी। बस सेवाओं में आई रुकावटों के बाद आज सुबह से यातायात धीरे धीरे सामान्य पर होने लगा पश्चिमी इलाकों को छोड़कर कई मार्गों पर सुबह से बसें फिर चलने लगी। दिन चढ़ने के साथ सेवाओं में सुधार हुआ, खासकर पिछित्रिविया में भी बसों की आवाजाही धीरे धीरे

0: ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਗਾ ਗੀਤਾ ਸਨੋਰਨ।
1: सुबह करीब 9:30 बजे NTC की बस सेवाएं धीरे धीरे सामान्य पर लौटने लगी।
2: अलगराज नुनचानुबी सुपरवाइजर जनरल सैंपियर नुनबिन सैंपियर नुनल वाकवा दी वाकवा नुनसन सैंपियर।
1: सुबह 6 बजे से ही बसों को उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना कर दिया गया था। हालांकि पश्चिमी इलाके में सेवा देने वाली बसें नहीं चल रही थी। NTC के ट्रैफिक मैनेजर श्याम दाजी कहते हैं,
3: Bande dépôt Kumala-Tokenik, qui se trouve dans Grande Rivière à la Tokenik, c'est là-bas qu'il y a un petit peu blocage. Pour comme si sécurité, ban travailleur et ban bus, même préfère prendre l'aval avec ban policier, ban station qui est dans les alentours. Mais par rapport à les autres dépôts, comme le sud, Rivière du Rempart, graduellement, à partir de 6 heures, nous recommençons à déployer ban bus.
1: वाकवा बस स्टेशन पर हालांकि स्थिति कुछ अलग नजर आई। मंगलवार को सब्जियों का साप्ताहिक बाजार होने के कारण यहां लोगों की काफी चहल पहल थी।
4: ना मुने म्यातन पिछकी 30 मिनट ला म्यातन सा 20 रुजा ला कि पास क्लोजेल काउलालान अपोजा काबोन
5: बिन बाजार ici la port à une finir c'est le gimme merci la batan bis ka baname bis met bis।
1: बसें बहुत कम नजर आई और उनमें यात्रियों की संख्या भी काफी कम थी। कुछ यात्रियों के लिए ये असामान्य स्थिति थी जिन्हें सीमित बस सेवाओं के बीच सफर करना पड़ा।
6: Depuis 8h15 me d'accord, mon copain bis même, ça a encore mordé mais toujours moi pas pour bien prendre bus. La plupart bus pour retourner à Marie ou Pérevin va quoi pour aller à Marie.
1: नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी बस सेवाएं आज शाम 6 बजे बंद हो गईं।
0: बोबासा और बॉम्बू समेत कई इलाकों में कल रात दुकानों और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ मचाई गई तो कहीं जबरन अंदर घुसने की घटनाएं सामने आई। आज दिन के दौरान कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे फिर से शुरू हुई लेकिन दुकानदारों और लोगों में सतर्कता बनी रही। मॉरिशस में हाल की तनावपूर्ण घटनाओं के बीच पोर्ट लुई के बिशप जॉन मिकाएल जॉन ने शांति और अहिंसा की अपील की है। रोम से जारी अपने संदेश में उन्होंने इलोजितोमा के प्रति चिंता जताई और उन लोगों उन बच्चों का भी जिक्र किया जो आज अपनी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि देश में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए हिंसा की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए जाना जरूरी है। मोनसिग्नर जॉन मिकाएल जॉन को सुनते हैं।
7: Qui est capable de retrouver la santé. On pense à tous les enfants, à tous les aussi, qui peuvent vivre cette situation-là et qui doivent bien rester à la case. On prie aussi, ben, du monde, car il peut être aussi dans une appel, une angoisse, qui ne pas laisser nous gagner par sa psychose, qui a fait aussi, à travers aussi des problèmes de réseaux sociaux, ben, bien faire attention aussi, ça crée aussi une tension et qui a pas fait beaucoup de dégâts. Alors, qui tout le monde, du monde, qui est de bonne volonté, qui travaille pour la paix, mais on essaie maintenant ensemble pour que la paix retourne dans le pays, que la paix aussi, qu'il nous construise, c'est une volonté aussi de non-violence.
0: हाल की झड़पों के बाद मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन ने आज सुबह गए जीमिक पत्रकार सम्मेलन के दौरान देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। भोजराज गुरबिन को सुनते हैं।
8: Nous fait un appel, nous garde nous calme, nous garde nous l'unité. Et solidarité. Quand nous faisons la prière, nous pas faire la prière juste pour nous faisons la prière pour nos enfants, nous faisons la prière pour la famille en entier, nous faisons la prière pour nous l'endroit et nous faisons la prière aussi pour nos pays. Pour tout passe bien, tout passe correct et, comme on peut dire, nous dans une période Durga Puja avec bénédiction Durga Ma, tout vous passe correct, vous faites un appel avec je tout. Nous gardons nous calme parce que quand nous faisons des affaires de colère, nous prenons une décision de colère tous les temps, les mauvais.
0: और देश में शांति सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए जमा मस्जिद ने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की है। आज जारी

0: बयान में मस्जिद के उपाध्यक्ष निसार रामतुल्ला ने इलोजितुमा की सफल ऑपरेशन पर संतोष जताया और लोगों से उनके तथा उनके परिवार के साथ खड़े रहने की अपील की। उन्होंने सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए सभी से सतर्कता और जिम्मेदारी दिखाने को कहा। साथ ही पानी की कमी जैसी मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे की मदद करने पर भी जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के बीच तनाव बढ़ गया है। राजधानी रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की खबर है। सऊदी सेना के मुताबिक सोमवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया। इससे पहले हवाई अड्डे पर हुए हमलों में कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। आशा गोबिन,
1: सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। सोमवार को सऊदी अरब की सेना ने दावा किया कि उसने रियाद के ऊपर एक और दक्षिण पश्चिमी शहर के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। लगातार हो रहे हमलों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। हवाई सेवाओं से जुड़ी सूचना के मुताबिक ये बंदी कम से कम 17 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले शनिवार को हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। रविवार को भी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक देश के दूसरे हवाई अड्डों पर भी हमलों की खबर है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले यमन में सऊदी अरब की बढ़ती सैन्य कार्रवाई के जवाब में किए जा रही है। वहीं सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने इन हमलों की निंदा की है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों ने सऊदी हवाई अड्डों पर यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है।
0: दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत ने अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की संभावनाओं को सामने रखा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। इस बीच IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। मास्का रेंज के दक्षिण में पाए जाने वाले एक काफी जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर रह कर हल्की बारिश हो सकती है। कल सुबह भी इन इलाकों खासकर ऊंचाइयों पर बारिश होने का अनुमान है, जबकि दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:40 पर सूर्योदय, शाम को 6:11 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में लुदेविक हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड लालमाटी में, ब्रांच रोड लालमाटी में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रेणुका नियोर, श्रीमती रेणुका नियोर पिताशी नाम गोपाल, जो रेणु नाम से जरा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके पति श्री विनय नियोर के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से

0: ठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 85 साल की 85 years old श्रीमती रंबावती सुकन, जो लीलू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाबोंचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। काउलालियान सोल्फेरिनो नंबर तीन वाकवा में 75 साल की 75 years old श्रीमती धनवंती बलोराम, पैदाशी नाम लड़का जो शीला साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान काहोलालियान सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। शिवाजी लेन मेलरोज में 60 साल के 60 years old श्री चंद्रसेन नाथिया जो गौसो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी माँ श्रीमती रानू नाथिया के मकान शिवाजी लेन मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता एम्बुलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। कोलाबू मोताइलोंग में 73 साल की 73 years old श्रीमती कृष्णावती राम प्रसाद, पैदाशी नाम महावीर सिंह, जो चिफिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी गुरुवार 15 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे इनके बेटे श्री आतीश राम प्रसाद के मकान कोलाबू मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफकिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे 15 अक्टूबर। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। बस जुड़े रहे, थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री की तरफ से जो कम्युनिके हैं। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहे, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहर ऊपर
2: सभी भक्तगण को अनीता का श्रद्धापूर्वक नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं देवी शक्ति अर्थात माँ दुर्गा की आराधना का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। और आज नवरात्रि का 3रा दिन है और इस दिन को हम माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। आइए हम माँ को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं।

की याद दिलाता है जो असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। साथ ही साथ 9 दिनों को 3-3 भागों में बांटकर प्रथम 3 दिन माँ दुर्गा अर्थात शक्ति को, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी अर्थात धन एवं समृद्धि को और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती अर्थात ज्ञान की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। तो आइए माँ पर आधारित

प्रियजन, नवरात्रि के प्रथम तीन दिन तमोगुण अथवा जड़ता को, अगले तीन दिन रजोगुण या बेचैनी और कार्यशीलता को, और अंतिम तीन दिन सतोगुण या पवित्रता और उच्च स्तरीय प्राण शक्ति को समर्पित होते हैं। हमारे भीतर तीनों गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और इन तीनों गुणों पर विजय पाने अर्थात केंद्रित रहकर जीवन का उत्सव मनाने के प्रतीक अंतिम दिन को विजयादशमी कहते हैं।

भक्तों, नवरात्रि में आपका मन दैवीय चेतना में डूबा होना चाहिए। एक शिशु को भी जन्म लेने में 9 महीने का समय लग जाता है, उसी प्रकार यह 9 दिन भी वैसे है जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आ रहे हो एक नए जन्म का समय। इन 9 दिन और रातों में हमें अपने भीतर जाकर अपने मूल का स्मरण करना चाहिए। स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा मूल स्रोत क्या है। आपको अपनी चेतना पर चिंतन करना चाहिए और इन 9 दिनों को 9 महीनों की भांति देखना चाहिए।

श्रोताओं, नवरात्रि आध्यात्मिक एवं शारीरिक शुद्धि का प्रतीक भी है। इन दिनों को शरीर और मन की ऊर्जा को फिर से जगाने, ध्यान, उपवास और आत्मसंयम का उत्तम समय माना जाता है। तो श्रोताओं, हम यही आशा करते हैं कि आपकी पूजा अर्चना सफल हो और माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर हो। तो इन्हीं विचारों के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होने चला। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

सामईन कराम, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कुरान करीम को बमंजर ईमान देखा जाए तो पूरा कुरान सैयद आलम नूर मुजस्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। रब कदीर ने अपने पाकीज़ा कलाम में अपने महबूब दाना गयूब सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम की तरह तरह से तारीफ़ व तौसीफ़ बयां फरमाई। कहीं तो कई कई आयात में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मौजूद हैं, तो कहीं पूरी पूरी सूरत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करती नज़र आती हैं। गोया अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी किताब में सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल, किरदार व कमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त के सब रंग समो दिए।

बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नात रसूल से। मोहतरम सामईन, इसी खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है आपने आज की बज़म को पसंद फरमाया होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं। अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: मंगलवार 13 अक्टूबर रेडियो मॉरिशस पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। और इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुट चुके हैं। आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और इस एक घंटे के प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा साथ देंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं।

श्रोताओं, आज नवरात्रि की तीसरी रात्रि है जहां पर माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे का आकार होता है और ये इसी के कारण माँ चंद्रघंटा इन्हें कहा जाता है। उनका स्वरूप साहस, शक्ति, शांति और वीरता का प्रतीक है और माँ जो है अपने भक्तों का सदा कल्याण करती है।

श्रोताओं, नवरात्रि के उपलक्ष्य में यह विशेष कार्यक्रम आप रेडियो मॉरिशस पर सुन रहे हैं। मैं सुमिता आप सभी का साथ दे रही हूँ। नवरात्रि जो है हमारे प्रमुख पर्वों में आता है और नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व माँ दुर्गा के नव स्वरूप को दर्शाता है और माँ दुर्गा का हर एक रूप हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है। माँ दुर्गा के इन रूपों में हमें सच्चाई दिखाई देती है, धैर्य दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है और सच्चाई के मार्ग पर चलने का रास्ता नजर आता है। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

श्रोताओं, नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष में आशा करते हैं कि ये जो व्रत आप धारण कर रहे हैं, ये जो पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, माता रानी तक अवश्य पहुंच रही होगी।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: कि नवरात्रि के प्रथम दिन हमने माँ शैल पुत्री को पूजा, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की, आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को हम पूज रहे हैं, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की अर्चना होती है, पांचवें दिन माँ स्कंद माता को पूजा जाता है, छठे दिन माँ कात्यायनी का स्मरण किया जाता है, सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना होती है, आठवें दिन माँ महागौरी को हम याद करते हैं और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री को पूजते हैं और दसवें दिन जो है दशमी होती है। दशमी की बात करें तो ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होती है।

श्रोताओं, नवरात्रि के दौरान भक्ति और श्रद्धा से हर कोई माँ दुर्गा को पूजता है। मंदिरों में माता का पाठ होता है, घरों में लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी का ध्यान करते हैं और कन्या पूजा होती है। इसी दौरान बहुत से लोग जो है व्रत का धारण करते हैं और माँ जो है अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और सभी भक्तों का कल्याण।

श्रोताओं, नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम को अभी आप सुन रहे थे। इस एक घंटे के अंतर्गत आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हमारी आपकी भेंट समाप्त हो जाएगी। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुमिता को अनुमति दे। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: Madhubala.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka. किरण संगे

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and

तेरा दिल है मेरा।

पुलकर पर से हो धूम मचाते गाते निकलो निकलो आज जिधर से खुशियों की मद मस्त घटा है आज तो खुलकर पर से खुशियों की मद मस्त घटा है आज तो खुलकर पर से।

0: बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग।
1: मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्जों में बयां करना आसान नहीं। कभी आंखों से बयां हो जाता है तो कभी खामोशी में छुपा रहता है, और कभी एक गाना वो सब कह देता है जो हम नहीं कह पाते। नमस्कार, मैं हूं नलमनी और आपका स्वागत है सुनहरे पल में। आज की रात समर्पित है उन्हीं प्यार भरे नगमों के नाम जिन्होंने कई दिलों को मिलाया है और कई खूबसूरत कहानियों को जन्म दिया है। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

भरा प्यार, नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना। वो पहली मुलाकात, वो छोटी छोटी नजरें मिलाना और फिर बिना वजह मुस्कुराते रहना। उस दौर में ना हर बात कहने के लिए फोन था, ना हर एहसास बयां करने के लिए कोई संदेश। कभी चिट्ठी ही दिल का हाल कह देती थी। वैसे आपको अपने पहले प्यार की कोई याद आती है? चलिए अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जो दिल के तार छेड़ते हैं।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। मोहब्बत में मिलना जितना खूबसूरत होता है, कभी कभी इंतजार भी उतना ही गहरा होता है। किसी के आने की राह देखना, दरवाजे पर आहट होते ही नजर उठाना और फिर उस एक मुलाकात की याद में पूरी शाम गुजार देना। आज के दौर में सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन पुराने जमाने के इश्क में सब्र का भी अपना एक मजा था। इसी एहसास को समर्पित है ये अगला नगमा आपके ही सुनहरे पल में।

प्यार सिर्फ कहना नहीं, निभाना भी होता है। प्यार सिर्फ खूबसूरत लफ्जों का नाम नहीं, प्यार है किसी की फिक्र करना, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना और बिना कहे किसी के दिल की बात समझ लेना। पुराने हिंदी गानों में मोहब्बत के कितने अलग अलग रंग मिलते हैं, कहीं शरारत, कहीं शिकायत, तो कहीं उम्र भर साथ निभाने का वादा। आपके लिए सच्ची मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान क्या?

मोहब्बत के नगमों का सफर यही पर अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, लेकिन प्यार के एहसास कभी खत्म नहीं होते। किसी के लिए एक पुराना गीत आज भी खास है, तो किसी के लिए कोई धुन एक खूबसूरत याद का हिस्सा है। रिश्तों को वक्त दीजिए, अपनों को अपनापन दीजिए और दिल की बात कहने में देर मत कीजिए। मैं हूं नर्मनी और ये थे सुनहरे पल। शुभ रात्रि आपको।